धनधारी पंच सर्व सुखा गुरचरणा कल मल डारन मन है सुधारन यह आसर मोहे तरना रहाओ पूजा अर्चा सेवा बंदन यह

क्रोध बिख जारो, सब ते नीच आत्म कर मानो। मन मह इहो सुख तारो, गुण गावह ठाकुर अबनासी, कलमल सगले चारो। नाम निदान नानक दान पावहो, कंठ लाए उर तारियो। नाम निदान नानक दान पावो, कंठ लाए उर तारियो। वाहिगुरु जी।

रहाउ। सब सुरती मेलो सुरत कमाई, सब कीमत मेलो कीमत पाई। ज्ञानी त्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तिल वड्याई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखा किया वड्याईया। तुद विण सिद्धि किने ना पाईया, कर्म मिलै नाहीं थाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा। जिस तू देहे तिसे क्या चारा, नानक सच सवारण हारा। आशा महला पहला, आखा जीवा विसरै मर जाओ। आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागै भूख। पुत भूखै खाए चली है दुख। सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहेब साचै नाए। रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई, आख थके कीमत नहीं पाई। जे सब मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै घाट ना जाए।

जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन कर कह कीती रात। खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सनात।

गुरमत नाम मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहाओ। हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास। हर हर नाम मिलै त्रिपताशा है, मिल संगत गुण प्रगास। जिन हर हर हर रास नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर।

अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावह संत हो जी, सब दुख विसारण हारा। हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबे बाच बेनती चौपाई।

हमरे दुष्ट सबै तुमका वहो, आप हाथ दय मुहे बचावहो। सुखी बसै मोरो परिवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर अच्छा निज कर दय करियै, सब बैरन कौ आज संगरियै। पूरन होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा।

है, चुन चुन सत्र हमारे मारिया है। आप हाथ दय मुझे उबरिया है, मरण काल का त्रास निवरिया है। हु जो सदा हमारे पच्छा, श्री आशतो जजु करे हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहेब संत सहाये प्यारे। दीन बंध दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दा सुकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कार बिसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सेव कियो, बेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सत्रन को पालमो बाध कियो। काट काट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पशाना, घट घट के पट पट की जाना। जब उदकारख करा करतारा, प्रजा तारत तब देह अपारा। जब अकारख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तार सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप आपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अर।

ताहि सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शाह श्वय सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल फास ते ताहे उबारा।

सवैया, पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनेयो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मानेयो।

पौड़ी। तिथै तू समरथ जिथै कोए नाहे, ओथै तेरी राखो अग्नि उदर माहे। सुन कै जम के दूत नाए तेरै छड जाहे, पौ जल बिखम असगाहो गुर सबदी पार पाहे। जिन कौ लगी प्यास अमृत से खाहे, पल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे। सब

दयाल मन हो ना विसारन साध जना कै संग भव जल तारेन साकत निंदक दुष्ट खिन माहे बेदारेन तिस साहिब की टेक नानक मन माहे जिस सिमरत सुख होए सगले दुख जाहे।

मोका कर संतन की तूरे। अंतरजामी पुरख विधाते श्रद्धा मन की पूरे, नानक दास एह सुख मांगे। मोका कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा।

एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लही ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जुन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस रठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरै घर नौ नित आवै धाए। सब थाई होए सहाए दसवें पातशाह। गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज सब थाई होए सहाए। सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। हे गरीब नवाज सचे पिता श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ, आप जी ने कृपा की है दाता जी अमृत वेले तो लै करके इस वेले तक आप जिया ने अपने सिंघासन ते प्रकाशमान हो करके संगतां नूं दर्शन दीदार बख्शिश कीते। सतगुरु गरीब नवाज आप जी का कोटान कोट शुकराना धनवाद है जी। इस वेले दीवाना की समाप्ति हुई है। आप जी दे सुख आसन की सेवा सोहिला साहिब जी दे पाठ किए ने। आप जी दे दर घर दे टहलियां पासों सेवावां निभाउंदिआं होईआं भुल्लां बख्श देणियां। सतगुरु जी आप जी कृपा करो अपने सुख आसन स्थानां विखे चल के विराजमान होवो। संगतां नूं खुशियां बख्शो। रात सुख शांति नाल बतीत करनी जी। अमृत वेले फिर संगतां नूं दर्शन दे दारे बख्शणे। सही प्यारे मिलने जिन्हां मिलिया तेरा नाम चेते आवे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सरबत दा।

अष्टपदी। जब अकार एकाशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता, जब तारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कुमात। जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सूख कहो किसे व्यापत। जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम। आपन थीला आप वर तीजा नानक करने हार ना दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कौ गनी। जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरक कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब सेव सकत कहो कित ठाए। जब आपे आप अपनी ज्योत धरै तब कवन निडर कवन कत डरै। आपन चले तो आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार। अबिनासी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन। जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो हो किस होए। जब अवगित अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त कैस पूछत लेखा। जब नाथ निरंजन अगोचर आगा दे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे। आपन आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा। जय निर्मल पुरख पात होता तह बिन मैल कहो क्या तोता। जय निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौ मान कौन अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदीश तह शाल शेदर लगत कहो कीस। जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसै भूख कवन त्रिपतावै। करण करावन करने हार नानक करते का नाहीं सुमार। जब अपनी सुबा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पहाई। जह सर्व कला आपे प्रवीण तह वेद कतेव कह कूचीन। जब अपन आप उरतारै तौ सगन अप सगन कहा विचारै। जह अपन ऊच अपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा। बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपने गात जानो आप। जय अशल अशेद अपेद समाया ऊहा किसै व्यापत माया। आपस को आपे आदेश तेह गुण का नाही प्रवेश। जह एक एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागै चिंता। जह आपन आप पति यारा तै कौन कथै कौन सुनने हारा। बहु बे अंत ऊच ते ऊचा नानक आपस को आपे पाहुचा। जह आप्रच्यो प्रपंचोकार तेहु गुण मै कीनो बिस्थार। पाप पुन तै पई कहावत को नरक को सुरग बंशावत। आल जाल माया जंजाल होमै मोह परम पह पार। दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान। आपन खेल आप कर देखै खेल संकुचै तौ नानक एकै। जह अवगत भगत तह आप जय पसरै पसार संत प्रताप। दुहु पाख का आपे तनी उनकी सुबा उनहु बनी। आपे कौतुक करे आनंद चोज आपे रास भोग निर्जोग। जिस भावै तिस आपन नाई लावै जिस भावै तिस खेल खिलावै। बेसुमार अथा अगंत अतुलै ज्यो बुलावो त्यो नानक दास बोलै। श्लोक जी जंत के ठाकुरा आपे वर्तनहार। नानक एको पसरिया दूजा कै दृष्टार। अष्टपदी आप कथे आप सुनने हार। आपे एक आप बिस्थार जात इस पावे तन सृष्टु पाए। अपने पाणे लय सुमाए तुम ते भिन नहीं किश होए। आपन सूत सब जगत परोए जाको प्रभ जियो आप बुझाए। सच नाम सोई जन पाए सो समदर्शी तत का बेता। नानक सगल श्रेष्ठ का जेता जी जंत्र सब तक हाथ। दीन दयाल अनाथ कुनाथ जिस रखै तिस कोई न मारै। सो मुआ जिस मनहु बिसारै तिस काज अवर कह को जाए। सब सिर एक निरंजन राय जी की जुगत जा कै सब हाथ। अंतर बाहर जानहु साथ गुण निधान बेअंत अपार। नानक दास सदा बलहार पूरन पूर रहे दयाल। सब ऊपर होवत कृपाल अपने करतब जाने आप। अंतर जामे रहे व्याप प्रत पालै जीअन बहु भांत। जो जो रचियो सो तिसै त्यात जिस भावै तिस लय मिलाए। भगत करै हर के गुण गाए मन अंतर विश्वास कर मान्या। करण हार नानक एक जानिया जान लागा हर एक नाए।

कोई न सुचही जी तिस गुण कोई करे सुने सिद्ध पीर सुरनाथ सुने धरत धवल आकाश सुने दीप लोप पाताल सुने पोए न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुने दूप पाप का नाश सुने ईश्वर ब्रह्मा इंद्र।

न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टै संसार। जिस हथ जोर कर वेखै सोए, नानक उत्तम नीच न कोए। राती रुती थिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप।

माता धरत महत दिवस रात दुएदाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईयां बुरे आईयां वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी

अतीत हैं, अपीत हैं, त्रिमान हैं, निदान हैं, त्रिवर्ग हैं, असर्ग हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अजय हैं, अजाद हैं, अजन्म हैं, अवर्ण हैं, अपूत हैं, अपर्ण हैं, अगंज हैं, अपांज हैं, अचूज हैं, अचांज हैं, अमीक हैं, रफीक हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, निर्बूज हैं, असूज हैं, अकाल हैं, अजाल हैं, अला हैं, अजा हैं, अनंत हैं, महंत हैं, अलीक हैं, निरसीक हैं, निर्लंब हैं, असंभ हैं, अगम हैं, अजम हैं, अपूत हैं, अछूत हैं, अलोक हैं, अशोक हैं, अकर्म हैं, अपर्म हैं, अजीत हैं, अपीत हैं, अबाह हैं, अगा हैं, अमान हैं, निदान हैं, अनेक हैं, विरेक हैं, भुजंग प्रयाचंद, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेकी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाते, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाथ नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे, परपंगी परमाते समस्ति विभूते, कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरं परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे, नमो शस्त्रपाणे, नमो अस्त्रमाणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेक्षी अपरमी अभोगी अभुगते, नमो जोग जोगेश्वरं परम युगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रेदेवे सुधर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो साहसाह, नमो फूप फूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्रं, नमो जंत्र जंत्रं, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र तंत्रं, सदा सच्चिदानंद सर्वं परनासी, अनूपे अरूपे समस्त निवासी, सदा सिद्ध दा बुद्ध दा वृद्ध करता, अदो उर्द अर्दंग अगंग ओग हरता, कर्म परम परमेश्वरं प्रोच पालं, सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं, अछेदी अपेदी अनामंग कामं, समस्तोपराजी समस्तस्ततामं, तेरा जोर चाचरी छंद, जले हैं तले हैं, अपीत हैं अपे हैं, प्रभु हैं अजू हैं, अदेश हैं अपेश हैं, भुजंग प्रयाचंद, अगाते अबाते अनंदी स्वरूपे, नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमस्त्वं निर्णाते, नमस्त्वं परमाते, नमस्त्वं गंजे, नमस्त्वं पंजे, नमस्त्वं काले, नमस्त्वं पाले, नमो सर्वदेशे, नमो सर्वपेशे, नमो राज राजे, नमो साज साजे, नमो साह साहि, नमो माह माहि, नमो गीत गीते, नमो प्रीत प्रीते, नमो रोख रोखे, नमो शोक शोके, नमो सर्व रोगे, नमो सर्व भोगे, नमो सर्व जीतं, नमो सर्व पीतं, नमो सर्व ज्ञानं, नमो परम तानं, नमो सर्व मंत्रं, नमो सर्व जंत्रं, नमो सर्व दृश्यं, नमो सर्व कृष्णं, नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे, नमो जीव जीवं, नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसीजे, कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी, सदा सर्वदारिद सिद्धं निवासी, चरपट छंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे, अखल जोगे अचल भोगे, अचल राजे अटल साजे, अखल धर्मं अलख कर्मं, सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता, सर्वंग पाने सर्वंग माने, सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं, सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता, सर्वंग देवं सर्वंग पेवं, सर्वंग काले सर्वंग पाले, रूवाल छंत्व प्रसाद आद रूप अनाद मूरत जौन पुरख अपार, सर्वमान त्रिमान देव अपेवाद उदा, सर्व पालक सर्व कालक सर्व कूपन काल, जतर ततर विराज ही अवतूत रूप रसाल, नाम ठाम न जात जाकर रूप रंग न रेत, आद पुरख उदार मूर्त जौन आद अशेख, देश और न पेश जाकर रूप रेख न राग,
ਜਤਰ ਤਤਰ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏ ਫੈਲਿਓ ਅਨੁਰਾਗ। ਨਾਮ ਕਾਮਹੀਨ ਪੇਖਤ ਧਾਮ ਹੂੰ ਨਹਿ ਜਾਹੀ, ਸਰਬ ਮਾਨ ਸਰਬਤਰ ਮਾਨ ਸੁਦੈਵ ਮਾਨ ਤੁਤਾਹੀ। ਏਕ ਮੂਰਤ ਅਨੇਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਨ ਰੂਪ ਅਨੇਕ, ਖੇਲ ਖੇਲ ਖੇਲ ਖੇਲ ਅਨੰਤ ਕੋ ਫਿਰੇਕ। ਦੇਵ ਭੇਵ ਨ ਜਾਣਹੀ ਜੇ ਬੇਦ ਔਰ ਕਤੇਬ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੋ ਜਾਣੀ ਕੇ ਜੇਬ। ਤਾਤ ਮਾਤ ਨ ਜਾਤ ਜਾਕਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਬਹੀਨ, ਚੱਕਰ ਬੱਕਰ ਫਿਰੈ ਚਤਰ ਚੱਕ ਮਾਨਹੀ ਪੁਰਤੀਨ। ਲੋਕ ਚੌਦਹ ਕੇ ਵਿਖੈ ਜਗ ਜਾਪੀ ਜੇ ਜਾਪ, ਆਦ ਦੇਵ ਅਨਾਦ ਮੂਰਤ ਥਾਪਿਓ ਸਭੈ ਜੀ ਥਾਪ। ਪਰਮ ਰੂਪ ਨੀਤ ਮੂਰਤ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਸਰਬ ਵਿਸਵ ਰਚਿਓ ਸਵਯੰ ਭਵ ਗੜਨ ਭੰਜਨ ਹਾਰ। ਕਾਲਹੀਨ ਕਲਾ ਸੰਯੁਗਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅਦੇਸ਼, ਧਰਮ ਧਾਮ ਸੋ ਭਰਮ ਰਹਿਤ ਭੂਤ ਲਖ ਭੇਸ਼। ਅੰਗ ਰਾਗ ਨਾ ਰੰਗ ਜਾ ਕਹਿ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਨਾਮ, ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਦੁਸ਼ਟ ਭੰਜਨ ਮੁਕਤ ਦਾਇ ਕਾਮ। ਆਪ ਰੂਪ ਅਮੀਕ ਅਨੁਸ਼ਟ ਤੇ ਪੁਰਖ ਅਵਧੂਤ, ਗਰਭ ਗੰਜਨ ਸਰਬ ਭੰਜਨ ਆਦ ਰੂਪ ਸੂਤ। ਅੰਗ ਹੀਨ ਭੰਗ ਨਾਤਮੇਕ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰ, ਸਰਬ ਲਾਇਕ ਸਰਬ ਕਾਹਿਕ ਸਰਬ ਕੋ ਪ੍ਰਤਪਾਰ। ਸਰਬ ਗੰਤਾ ਸਰਬ ਹੰਤਾ ਸਰਬ ਤੇ ਅਨਭੇਕ, ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਾ ਜਾਣਹੀ ਜੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਰੇਖ। ਪਰਮ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਜਾ ਕਹਿ ਨੇਤ

निरंकानिरंक कालानकाल अनुपूत अंग आभा भंग गतमित पार गुणगन उदार मुनगन प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड आलिश्य कर्म अदृश्य धर्म सर्व प्रनाडे अंडन बाडे चाचरी चंतु प्रसाद गोविंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निर्नामे अकामे पुजंग प्रिया चंद चतर चक्र कर्ता चतर चक्र हर्ता चतर चक्र दानी चतर चक्र जानी चतर चक्र वर्ती चतर चक्र परती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे चतर चक्र माने चतर चक्र दाने चाचरी छंद न सुत्र न मित्र न परमंग न पित्र न कर्मंग न काये अजन मंग जाय न चित्र न मित्र परे है पवित्र प्रतिशय अधिशय अदृशय कृशय भगवती छंद प्रसाद कथते के आ चिज देशय के आ भिज पेशय के आ गंज करमय के आ भंज भरमय के आ भिज लुकै के आ दित सुकै के अवधूत बरनय के विभूत करनय के राजंग प्रभाह के धर्मंग तुझा है के आ सुख बरनय के सर्वा अपरनय कि जगतंग कृति है कि छत्रंग छत्री है कि वर्मंग स्वरूप है कि अनुपहो अनुप है कि आदिव है कि आप अपेव है कि चित्रंग बहीन है कि कै अधीन है कि रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह कि पाक बेअब है कि गय भूल गय है कि अफूल गुनाह है कि साहन साह है कि कारण कुनिंद है कि रोजी देहांद है कि राजक रही मैं कि कर्मंग करी मैं कि सर्वंग कली है कि सर्वंग दली है कि सर्वत्र मान्य कि सर्वत्र दान्य कि सर्वत्र गौण है कि सर्वत्र पौण है कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र राज्य है कि सर्वत्र साज्य है कि सर्वत्र दीन है कि सर्वत्र लीन है कि सर्वत्र जाहु कि सर्वत्र पाहु कि सर्वत्र देश है कि सर्वत्र पेश है कि सर्वत्र काल है कि सर्वत्र पाल है कि सर्वत्र हंता कि सर्वत्र गंता कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र पेखी कि सर्वत्र काजय कि सर्वत्र राजय कि सर्वत्र सुख है कि सर्वत्र भूख है कि सर्वत्र त्राण है कि सर्वत्र प्राण है कि सर्वत्र तिश है कि सर्वत्र पिश है कि सर्वत्र मान्य है सदैव प्रधान्य है कि सर्वत्र जाप्य है कि सर्वत्र ताप्य है कि सर्वत्र पान है कि सर्वत्र मान्य है कि सर्वत्र इंद्र है कि सर्वत्र चंद्र है कि सर्वं कली मैं कि परमं कही मैं कि आकल अलाम है कि साहिब कला में कि हुसनल वजू है तमामुल रजू है हमेशुल सलाम है सलीखत मुदाम है गनीमुल से कष्ट है गरीबुल परस्त है बिलंदुल मकान है जमीनुल जमान है तमीजुल तमाम है रुजुअल निदान है हरीफुल अजीम है रजाइक यकीन है अनेकुल तरंग है अभेद है अपंग है अजीजुल निवाज है गनीमुल खिराज है निरुक्त स्वरूप है त्रिमुक्त विभूत है प्रभुक्त प्रभा है सुयुक्त सुधा है सदैवं स्वरूप है अभेदी अनूप है समस्त उपराज है सदा सर्वसाज है समस्तुल सलाम है सदैव काम है निर्बाध स्वरूप है अगाध है अनूप है ओ अंगाध रूप है अनाध स्वरूप है अनंगी अनामी त्रिपंगी त्रिकामी त्रिवर्गं त्रिवादे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सुसर्वानुरागे त्रिपुगत स्वरूप है अछिज है अछूत है के नरकं प्रनाश है पृथ्वल प्रवास है निरुक्त प्रभा है सदैवं सदा है विपुगत स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है निरुक्त सदा है विपुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रयुक्त अनूप है चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेख है अलेख है अपर्म है अकर्म है अनाथ है जुगाद है अजय है अभय है अपूत है अतूत है अनाश है उदास है अतंध है अबंध है अभगत है विरक्त है अनाश है प्रकाश है निचिंत है सुनित है अलिख है अधिक है अलेख है अपेख है अटा है अगा है असंभ है अगम्भ है अनिल है अनाद है अनित है सुनित है अजात है अजाद है चरपड़ चंतु प्रसाद सर्वंगहंता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्याता सर्वंगहर्ता सर्वंगकर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं
सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल छन्त्व प्रसाद नमो नर्तनासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमात्म परमाते सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते न साकं शरीक अमितो अमीक सदैव प्रवाह अजय अजाह भगवती चन त्व प्रसाद जाहर जहूर है कि हाजिर हजूर है हमें सुलसलाम है समस्त कलाम है के साहिब दिमाग है के हुसनल चिराग है के कामिल करीम है के राजक रहीम है के रोजी देहंद है के राजक रहिंद है करी मुल्क माल है के हुसनल जमाल है गनी मुल्क राज है गरीब निवाज है हरीफुल सिकन है हिरासुल फिकन है कलंकंग प्रनास है समस्तुल निवास है गंजुल गनीम है रजायक रहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब किरा है के नरकंग प्रणास है वह सुनिवास है के सरबुल गुवन है हमीसुल रवन है तुमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परमीश है समस्तुल अदीश है आदेशुल अलेख है हमीसुल अपेख है जमीनुल जुमा है हमीकुल अमा है करीमुल कमाल है के जुरत जुमाल है के अचलंग प्रकाश है के मितो सुबास है के अजब स्वरूप है के मितो विभूत है के मितो पसा है के आत्म प्रभा है कि अचलंग नंग है कि मितो अपंग है मद पार चंद प्रसाद मुन मन प्रणाम गुनगन मुदाम अरबर अगंज हर नर पर भंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अन पवनास मुन मन प्रकाश गुनगन प्रणाम जल थल मुदाम अनछिज अंग आसन अपंग उपमा पार गत मितुदार जल तल अमंड दिशविश अपंड जल तल महंत दिशविश बेअंत वन पवन अस्त्रितर तुरास आ जान बाहु एक सदाहु ओंकारात कथनी अनाद खल खंड खयाल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गातु अज जिना बातु अन झंझ गातु अन रंज बातु अन टुट भंडारण डठ अपार आडीठ धर्म अत ठीठ कर्म अनब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना चंतु प्रसाद करुणालय है अरकालय है खलखंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वभारण है त्रित के करण है जग के करण है मन मान्य है जग जान्य है सर्वंग पर है सर्वंग कर है सर्वपाश्य हैं सर्वनाश्य हैं करुणा कर हैं विश्वंतर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं जपा जपें थपा थपें अकृता कृत्य अमृता अमृत्य अमृता अमृत्य करुणा कृत्य कृता कृत्य धरणी कृत्य अमितेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत्य अमृता अमृत हैं अजबा कृत्य अमृता अमृत हैं निर्णायक हैं खलकायक हैं विश्वम पर हैं कुरनाल्य हैं नृपनायक हैं सर्पायक हैं पापंजन हैं अर्गंजन हैं रिपतापन हैं जप जापन हैं अकलंकृत्य सर्वाकृत्य कर्ता कर है हरता हर है परमात्म है सर्वात्म है आत्मवस है जस की जस है भुजंग प्रयाचंद नमो सूर्य सूर्य

स्वरूपे नमो परम तत्तंग तत्तंग स्वरूपे नमो योग योगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादं विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो वासो वासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे कचरी चंद अजय अलय अभय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलक अपाक अकाल दयाल अलेख अपेक नाम अकाम अगाह अटाप अनाथि परमाथि अजो नियमो निनराग नरंगे नरूपे नरेके करमंग परमंग गंजे अलेखे भुजंग प्रयाचंद नमस्तुल परनामी समस्तुल परनासे अगंजुल अनामी समस्तुल निवासे निरकामंग बेपूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग परनासी सुधर्मंग बेपूते सदा सचदानंद सत्रंग परनासी करिमुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजाय बेपूते गजाय गनी में हरियं करियं करिमुल रहिमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सोयं भव सुभं सर्व

श्रीपद श्री भगवान भजीपिन अंत को अंत के ताम सिदारी तीरथ नान दया दम दान सुसुंजम नेम अनेक बसिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जुमान सुबान के पिक है पावन आहार जति जत तार सब सुचार हजार के दिख है श्री भगवान भजी बिन भूपत एक रति बिन एक न लिख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुशासना दुर्जान दलेंगे पारी गुमान परि मन में कर पर्वत पंख हली न हलेंगे तोर अरीन मरूर मुवासन मातिम तंगन मान मलेंगे श्री पद श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहां निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बर यार अपचार सार की तार पछैया तोरत देश मलिंद मुवासन माते दिजान के मान मलैया गाड़े गड़ान के तोड़ नहार सुबात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सबको सिरनायक जाचक नेक सुवेक दिवैया दानव देव निन निशाचर भूत पवेक भवान जपेंगे जीव जिते जल में तल में पल ही पल में शुभ ताप तपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत तुन पापन के वो पुंज कपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्र सुबह अवलोक छपेंगे मानव इंद्र जिंद्र निराधप जौन तलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजा दिख दान अनेक सुवंबर साज भरेंगे ब्रह्म हिस्सर विष्ण सचिपत अंत बसे जम फास भरेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है भगते नर फिर न दे तरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद कह बैठ रहे हो भक्त्यान लगायो नाथ फिर लिये साल समुन्द्र लोक गयो पर लोक गवायो बास की बख्यान सु बैठ के ऐसे ही ऐसे सुबह से बितायो साच कहूँ सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो काहू ले पाहन पूज धरियो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो काहू लख्यो हर वाची दिशा मह काहू पछा को शीस निवायो को बतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो को बतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह इको अंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बाच बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दैर चा पूर्ण हुए चित की चा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दे मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दे करिये सब बैरन को वा संगरिये पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है पूजो सदा हमारे पच्छा श्री आस तुझू करे हो रच्छा राख ले हो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे तीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिव जू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव कियो वेद राज ब्रह्मा ज्योतियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दै जच्छन उपजायो आदंत कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा नमस्कार।

अक्षर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचरे अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जब उदकर्क करा करतारा, प्रजा तरत तब देह अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सिर सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अरालम, निरंकार निर्भकार निर्लंब, आद नील अनाद असंभ, ताका मूढ़ उचारत भेदा, जाको पीव न पावत वेदा, ताका कृपा हनुमानत, महा मूढ़ कछ भेद न जानत, महादेव को कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत न पेव, आप अपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तुहे तेती, तुमरा लखा न जाए पसारा, के भी सजा प्रथम संसारा, एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कही भूपा, अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी, कहूं भूल राजा वह बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर कैठा, सिगरी सृष्ट दिखाए अचंपा हो, आद जुगात स्वरूप स्वयं पाहु, अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार असिख संगरो, दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रन काता, जे अस तुझ तव सरनी परे, तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे, पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब तारे, जो कल को एक बार तय है, ताके काल निकट न है, रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काला, कृपा दृष्ट तन जाहि निहर हो, ताके ताप तनक मै हर हो, रिद्ध सिद्ध कर्मु सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न खोई, एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फास्ते ताहे उबारा, जिन नर नाम तिहारू कहा, दारिद दुष्ट दुख तेरा, खड़ग केत में शरण तिहारी, आप हाथ दैले हो उबारी, सर्व ठाउर मोह सहाई, दुष्ट दुख ते ले हो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किल्बिक सकल देह को हरता, दुष्ट दुखियन को छय करता, श्री अस्तु जप हे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बांचत फल पावे सोई, दुख न तिसै व्यापत कोई अड़िल, सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द पौ निकट न तिन नर के रह, हो जो या की एक बार चौपाई को कहे, चौपाई संबत सत्रह सहस पनी जय, अर्ध सहस पन तीन कही जय, पादर सुदिष्ट मीर वारा, तीर सद्रव ग्रंथ सुधारा, सुवैया पाए गए जब ते तुमरे, तब ते कुमाक तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण पुराण, अनेक अहमत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र वेद सब है, बहु भेद कहे हम एक न जान्यो, श्री सुपान कृपा तुमरी कर, मैं न कहूँ सब तुहे बकान्यो, दोहरा सगल द्वार

सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहिया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित, सतगुर रहिया भर पूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

का चक्की चक तलवार ओले बहुत अनंत लाटू माधानियान गा पंखी पौंदियां लै नसा सुवै चढ़ पवाई जंत नानक पौंदियां गणत ना अंत बंधन बन पवाए सोए पै कत नचे सब कोए नत न छसे चले सर ओढ़ ना जाय सना हो न तुड़ कुदरा मन का चाओ।

0: बहकार जोगी सुनते आवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया का कर सतिया मन संतोख उपजय देना कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा दे दे मंगे सहसा गुणा सोभ करे संसार चोरा जारा तै कूड़ियारा खरब
1: विकार एक हुंदा खाए चले था।

0: नीन तेहवा देवा वे रूप कर सिगार ऊंचे कुके वादा गावे जो दा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत उदत संजय करह प्यार तरमी तरम करी गवा वे मंगे मोग द्वार जिस दावे जुगत न जाने छड़ बहे कर बार सबको पूरा आपे हो वह घटना कोई आखे पत प्रमाणा पिछे पाई ता नानक तोलिया जापे
1: महला पहला वदी सो जग नानका सच्चा वेख्या सोए सबनी छाला मारियां करता करे सो होए अगे

कत्री शब्दंग सूर शब्दंग सूदर शब्दंग प्राकृत है सर्व शब्दंग एक शब्दंग जे को जाने पे हो नानक ताका दास है सोई निरंजन देव मल्ला दूजा एक।

0: सुधे जाहे महला पहला।
1: पुस्तक संध्या बादंग सिल पूजस बगल समादंग मुख झूठ बबूकर सारंग त्रैपाल तिहाल विचारंग गलमाला तिलक ललाटंग दोए धोती वस्त्र कपाटंग जे हे जानस ब्रह्मंग कर्मंग सपो कपने चो कर्मंग कौनार्क ने चो त्यावे विर सतगुर वाट न पावे।
2: सतगुरु बिटवारे जित मिले।

अपना गुण न गवावे रहाओ। जो किछ करे सोया पे स्वामी, हर आपे कार कमावे, हर आपे ही मत देव स्वामी, हर आपे बोल बुलावे।

आओ चरण कमल गुर के मन उठे दुख दर्द भ्रम बिन से झूठे नित उठ गावो प्रभ की बाणी आठ पहर हर सिमरहु प्राणी घर बाहर प्रभ सबनी थाई संग सहाई जह हाउ जाई दोए कर जोड़ करी अरदास सदा जपे

लख चौरासी जोन न पवे इहां उहां चरण पुजारे मुख उजल साचे दरबारे जिस मस्तक गुर धरिया हाथ कोट मध्ये को विरला दास जल थल महियल पेखै भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर परभाती महला पंजवा कुर्बान जाई गुरपूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाओ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल साच शब्द स्यों लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ परगास गुर शब्दे कीना हृदय निवास गुरु समरथ सदा दयाल हर जप जप नानक पहे निहाल परभाती महला पंजवा गुर गुर करत सदा सुख पाया दीन दयाल पहे किरपाला अपना नाम जपाया आप जपाया दीन दयाल पहे किरपाला अपना नाम आप जपाया रहाओ संत संगत मिल भया प्रगास हर हर जपत।

जैसी मनसा तैसी दशा, जैसा कर्म तैसी लिवलावे, सतगुर पूछ सहज कर पावे। राग नाद मन दूजे पाई, अंतर कपट महा दुख पाई।

लोभाया सुत कंचन स्यो हेत वधाया सब किछि अपना एक राम पराया ऐसा जाप जपो जप माली दुख सुख पर हर भगत निराली राव गुण निदान तिरंत न पाया साच शब्द तुझ माही समाया आवा गौण तुदया परचाया से भगत जिन सच चित लाया ज्ञान ध्यान नर हर निर्वाणी बिन सतगुर भेटे।

तिन कर जग अठार है काही। किरत न चलै चलाया, गणत न गणी हुक्म पछाणा, बोली भाए सुभाई, जो किछ वरतै तुतै सलाही, सब तेरी वडियाई। गुरमुख अलिप्त लेप कदे न लागै, सदा रह शरणाई। मनमुख मुगद आगै चेतै नाही, दुख लागै पछताई, आपे करे कराए करता जिन।

हर मंदिर हर का हाट है, रखिया शब्द सुवार, तिस विच सौदा एक नाम, गुरमुख लैन सुवार। हर मंदिर मेहमान लोहट है, मोहया दूजे पाए, पारस भेटिया कंच।

लागन, इन सन बंदी रसातल जाए, हम गुर राखे हर लिवलाए। आंग मेव स्यों मसलत छोड़ी, गुर कहया ए मूर्ख होड़ी, एहो निगार घर कही न पाए।

मन मह क्रोध महा अहंकारा, पूजा करह बहुत विस्तारा, कर स्नान तन चक्र बनाए, अंतर की मल कभी न जाए, इत संयम प्रभ किन्ही ना पाया, भगवती मुद्रा मन मोहया माया रहा, पाप करे पंचा के बसरे, तीर्थ नहाए कह सब उतरे, बहुर कमावे हुए निशंक, जमपुर बांध खरे कालंक, घूंगर बांध बजावे ताला, अंतर कपट फिरे बेताला, वर्मी मारी सांप न मुआ, प्रभ सब किच जाने जिन तू किया, उमर ताप गेरी के बस्तरा, अपदा का मारिया ग्रह ती नस्ता, देश छोड़ पर दे सहताया, पंच चिंडाल नाले ले आया, कान फराए हिराए टूका, कर कर मांगे त्रिपतावन ते चूका, बनता छोड़ बद नदर पर नारी, वेश न पाइए महा दुखियारी, बोले नाही हुए बैठा मुनी, अंतर कल्प पुआइए जूनी, अनति रहता दुख देही सहता, हुक्म न बूझे व्याप्या ममता, बिन सतगुर किने न पाई परम गते, पुछो हो सगल वेद सिमरते, मन मुख कर्म करे अजाई, ज्यों बालू घर ठौर न ठाई, जिसनु भए गोबिंद दयाला, गुर का बचन तिन बाध्यो पाला, कोट मदे कोई संत दिखाया, नान तिनके संग तराया, जे हुए भाग ता दर्शन पाइए, आप तरह सब कम तराइए, रहा दूजा प्रभाती महला पंजवा, सिमरत नाम किल बिक सब काटे, धर्म राय के काकर फाटे, साध संग मिल हर रस पाया, पार ब्रह्म रिद माहे समाया, राम रमत हर हर सुख पाया, तेरे दास चरण शरणाया, रहा चूका गौन मिटिया अंधियार, गुर दिखलाया मुक्त द्वार, हर प्रेम भगत मन तन सदराता, प्रभु जनाया तब ही जाता, घट घट अंतर रविया सोए, तिस बिन बीजो नाही कोए, बैर विरोध छेदे भय भरमा, प्रभ पुन आत्मे कीने धर्मा, महा तरंग ते कांड लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संजम नाम संभालिया, अपने ठाकुर नदर निहालिया, मंगल सुख कल्याण तिथाई, जय सेवक गोपाल गुसाई, प्रभ सो प्रसन्न भये गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बिताल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ स्नान करी जा, चरण कमल निम हृदय धारे, गोबिंद

देव गंधारी महला पंजवां अपने सतगुर पै कहो बिनो कहया पै कृपाल पै की पाल दयाल दुख भंजन मेरा सगल देसरा गया रहा हम पापी पखंडी लोभी हमरा गुने अवगुण सब सया कर मस्तक धार साज नवाजे मोहे दुष्ट जो खया पार उपकारी सर्व सधारी सफल दर्शन सह जया कौ नान निर्गुण कौ दाता चरण कमल गुर सरिया देव गंधारी मल्ला पंजवां नाथ नाथ प्रभ हमारे शरणायो राखन हारे राव सर्व पाग राख मुरारे आगे पाछै अंती वारे जब चितव तब तुहारे उन समार मेरा मन सुधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ सादर सारे मन में रखो एक सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे देव गंधारी मल्ला पंजवां प्रभ है मनोरथ मेरा कृपा निधान दयाल मैं दीजै कर संतन का चेरा राव प्रातः काल लागो जन चरणी निस्वासुर दर्श पावो तन मन अर्प करो जन सेवा रसनाहार गुण गावो साहस साहस सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिये एक धार नाम धन मोरा आनंद नानक लइये राग देव गंधारी महला पंजवां घर के जाय ओंकार सतगुर प्रसाद मीता ऐसे हर जी उपाए छोड़ न जाए सदी संगे अनदिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखै न त्याग न कत हो जाए अनेक अनेक भांत बो पेखे प्रे रोम न संसर लाए मंदर भाग सोभ द्वारे अनहथरुण चुन लाए कौ नानक सदा रंग माणे गृह प्रेथी ते सद थाए देव गंधारी महला पंजवां दर्शन नाम कौ मन आछै भ्रम आयो है सगल थान रे परयो संत पाछै रहा केसो सेवी केसर आदि जो दिष्ट सो गाछै साध संगत की सरणी पाइय परिय चरण रेण मन बाछै जुगत न जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माए आछै आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराछै देव गंधारी महला पंजवां अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मम मन मोहन प्यारे सब मद निरारे रहाओ राज न चाहो मुक्त न चाहो मन प्रीत चरण कुमलारे ब्रह्म हे सिद्ध मुनिंद्रा मैं ठाकुर ही दरसारे बिन दीन द्वारे आयो ठाकुर शरण पर्यो संत हारे कौ नानक प्र मिले मनोहर मन शीतल बिकसारे देव गंधारी महला पंजवां हार जप सेवक पार उतार्यो दीन दयाल भय प्रभ अपने बहुत जन्म नहीं मार्यो रहाव साध संगम गुण गावे हर कै रतन जन्म नहीं हार्यो प्रभ गुण गाय बिखय बन तरिया कुल समूह उधार्यो चरण कमल बस्या रिद पीतर सास गिरास उचार्यो नाने कोट गई जगदीसर पुनः पुनः बलिहार्यो राग देव गंधारी महला पंजवां घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करत फिरे बन भीख मोहन रहत निरार रहाओ कथन कुन सुनावन गीतनी के गावन मन में तरते अदगार आत सुंदर बचतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत हिमार्ग खंडे तार कौ नानक तिन भव जल तारी जले प्रभ कृपा संत संगार राग देव गंधारी महला पंजवां घर पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं पिखरी ऊंचा मोहन सब ते ऊंचा आना संसार को लागे टूट रहे हम ऊंचा रहाओ बो बेअंत अत बडो गाहरो था नहीं अगूचा तोल न तुलिय मूल न मुड़िय कत पाइय मन रुचा खोज संखा ने कत पंथा बिन गुर नहीं पहुचा कौ नानक कृपा करी ठाकुर मिल साधु रस पूंचा देव गंधारी महला पंजवां मैं बहु विद पेख्यो दूजा ना हीरी को खंड दीप सब पीतर व्या पूर रहो सब लोग रहा गा गम्मा कवन महिमा मन जीव सुन सो चार आश्रम चार बरना मुक्त पाए सेव तो गुर का शब्द डाया परम पद पाया दुतिया गए सुख हो कौ नान पव सागर तरिया हर निध पाई सहजो
राग देव गंधारी मल्ला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रे हर एक जान एक गुरमुख जान रहाओ काहे प्रमत हो तुम प्रमो न पाई रव्यारे रव्या सर्वथान जो बसंतर काष्ट मजार बिन संयम नहीं कार्य सार बिन गुर न पावे गो हर जी को द्वार मिल संगत ताजब मान कौ नानक पाए है परम निदान देव गंधारी पंजवा जानी न जाय ताकि गात रहाओ कह पख कह पे खारो हो कर चतुराई बिस्मन बिस्मे कहन कहात गण गंधर्व से दर साधक सुनर दे ब्रह्म ब्रह्मादक चतुर्वेद उचर दिन रात गम गम ठाकुर आगाद गुण बे अंत पन नानक कह न जाई पर परात देव गंधारी महला पंजवा त्याय गाय करण हार पौ नाही सुख सहज पी पौ नाही सुख सहज आनंदा अनेक ओही रे एक समार रहाओ सफल मूर्त गुर मेरा माथा है जत कत पेखो तत तत सत है चरण कमल मेरे प्राण आधार समृत अथा

महिमा लापनिमा। उल्टी रे मन उल्टी रे, साकत सेव कर उल्टी रे, झूठ है की रे झूठ प्रीत, छुटकी रे मन छुटकी रे, साकत संग न छुटकी रे रहा। जो काजर पर मंदर राख्यो, जो पैसे कालू की रे, दूरो ही ते भाग गयो है, जिस गुर मेर छुटकी त्रिकुटी रे। मांगो दान कृपाल कृपा ने द, मेरा मुख साकत संग न जुट सीरे। जन नानक दास दास को करियो, मेरा मूंड साध पगा हेठ रुल सीरे। राग देव गंधारे महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सब दिन के सम्राट पंत बिठले हो, बल बल जाओ, गावन पावन संतन तो रहे, चरण उवा कह पाओ रहा। जासन बासन सहज खेल करुणा में, एक अनंत नु बैठाओ, रिद सिद्ध निध कर तल जग जीवन।

राग देव गंधारी मैला नवा ये मैं नायक न कहो करे सीत सिकाय रहो सी अपनी दुर्मते ना टराय रहाओ मत माया कह पयो बावरो हर जस न उचरे कर परपंच जगत को डैक अपनो उदर पर है स्वान पूजो हो न सुदो कहो न कान तरह कहो नानक भज राम नाम नित जाते काज सरै देव गंधारी महला नवा साब किच जीवत को व्यवहार मात पिता भाई सुतबंधप अर फुन गृह किनार तांते प्राण भूत जब न्यारे टेर प्रेत पुकार याद करी को नहीं रखे घर से देत निकार मृग तृष्णा जो जग रचना या देखो हृदय विचार कौ नानक पज राम नाम नित जाते होत उधार देव गंधारी महला नवा जगत में झूठी देखी प्रीत अपने ही सुख से सब लागे क्या दारा क्या मीत रहाओ मेरो मेरो सब कहत है हित से बाध्य चीत अंत काल संगी न को अचरज रीत मन मूर्ख जो न समझत सिख दहार्यो नीत नानक भव जल पार पर जो गावे प्रभु के गीत एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त जूनी स भंगुर प्रसाद राग बिहागड़ा चौप दे महला पंजवा घर दूजा दूतन संगरिया पोए अंगन बसरिया अनेक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाओ मिथन मोहरिया अन को मेरिया विच घूमन किरिया सगल बटरिया बिरख एक तरिया बोबंद परिया थिर साल सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सर नरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हार की गत नहीं को जाना है जोगी जपी तपी पचहारे यार बहु लोग सियाने रहा छिन में राव रंग पौ करई राव रंग कर डारे रीते परेर परे सखना वै जैता को व्यवहारे अपनी माया आप सारी आप देखनहारा नाना रूप और तरे बोरंगी सब तेरे न्यारा अगणत पार लख निरंजन हे सब जग परमायो सगल परम तज नानक प्राणी चरणता हे चितलायो राग बिहागड़ा चंत महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर नाम त्याय मेरी जिंदड़िए गुरमुख नाम मोले राम हर रस विदा हर मन प्यारा मन हर रस नाम चकोले राम गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़िए जिंदड़िए नत नका उडोले राम मन चिंदे अड़ा फल पाया हर प्रभ गुण नानक मन चिंदड़िया फल पाया हर प्रभ गुण नानक बाणी बोले राम गुरमत मन अमृत बुठड़ा मेरी जिंदड़िए मुख अमृत बैण लाए राम अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए मन सुनिए हर लिव लाए राम चिरी विछुना हर प्रपाया गल मिलया सह सुभाए राम जन नानक मन आनंद पया है मेरी जिंदड़िए अनहत शब्द वजाए राम सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए कोई हर प्रभ आन मिलावे राम हो मन तंदे बहुत सापुना मेरी जिंदड़िए हर प्रभ की हर कथा सुनावे राम गुरमुख सदा राध हर मेरी जिंदड़िए मन चिंदड़िया फल पावे राम नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए वडभागी नाम त्यावे राम कर कृपा प्रभाए मेल मेरी जिंदड़िए गुरमुख नाम परगासे राम हो हर बाज उडीणिया मेरी जिंदड़िए ज्यों जाल बिन कमल उदासे राम गुरपुरै मेलाया मेरी जिंदड़िए हर सज्जन हर प्रपासे राम धन धन गुरु हर दस्या मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम बिगासे राम राग बिहागड़ा महला चौथा अमृत हर नाम है मेरी जिंदड़िए अमृत गुरमत पाए राम हम माया बेख है मेरी जिंदड़िए हर अमृत बेख ले जाए राम मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम ते आए राम हर भाग वडे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम
हर सेती मन भेदया मेरी जिंदड़िए जो बालक लग दुध खीरे राम हर बिन सांत न पाईए मेरी जिंदड़िए जो चातरिक जल बिन टेरे राम सतगुर सरणी जाए पाओ मेरी जिंदड़िए गुण दसे हर प्रभ केरे राम जन नानक घर में लाया मेरी जिंदड़िए करवाजे सद कनेरे राम मान मुख हो मैं विछुड़े मेरी जिंदड़िए बिख बाधे हो मैं जाले राम जो पंखी कपोता बनाया मेरी जिंदड़िए त्यों मान मुख सब वस काले राम जो मोह माया चित लाएं दे मेरी जिंदड़िए सायम से मान मुख मूड बिताले राम जन त्राहे त्राहे शरणागति मेरी जिंदड़िए गुरु नानक हर रखवाले राम हर जन हर ले बुबरे मेरी जिंदड़िए तुर भाग वड्डे हर पाया राम हर हर नाम पोत है मेरी जिंदड़िए गुर खेवड़ सब तराया राम हर हर पुरख दयाल है मेरी जिंदड़िए गुर सतगुर मीठ लगाया राम कर कृपा सुन बेनती हर हर जन नानक नाम दृढ़ाया राम बिहागड़ा महला चौथा जग सुकृत कीर्त नाम है मेरी जिंदड़िए हर कीर्त हर मन तारे राम हर हर नाम पवित्र है मेरी जिंदड़िए जब हर हर नाम उधारे राम सब केल बिख पाप दुख कटिया मेरी जिंदड़िए मल गुरमुख नाम उतारे राम वड पुनी हर त्याया जन नानक हम मूर्ख मुग्ध निस्तारे राम जो हर नाम त्याय दे मेरी जिंदड़िए तिना पंचे वस गताए राम अंतर नाम रिंद नाम है मेरी जिंदड़िए गुर सतगुर लख लखाए राम गोरिया सा मनसा पूरिया मेरी जिंदड़िए हर मिलया भुख सब जाए राम तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया मेरी जिंदड़िए जन नानक हर गुण गाए राम हम पापी बलवंशिया मेरी जिंदड़िए पर द्रोही ठग माया राम वडभागी गुर पाया मेरी जिंदड़िए गुर पूरे गतमित पाया राम गोरे अमृत हर मुख चोया मेरी जिंदड़िए फिर मरता बौड़ जीवाया राम जन नानक सतगुर जो मिले मेरी जिंदड़िए तिनके सब दुख गवाया राम आतूतम हर नाम है मेरी जिंदड़िए जित जपिए पाप गवाते राम पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए चौकुंडी चौचुक जात जाते राम हूं मैं मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए हर अमृत हर सर नाते राम अपराधी पापी उतरे मेरी जिंदड़िए जन नानक खिन हर राते राम बिहागड़ा महला चौथा हो बलिहारी तिनको मेरी जिंदड़िए जिन हर हर नाम अधारो राम गुर सतगुर नाम दे रड़ाया मेरी जिंदड़िए बिक पौ जल तारण हारो राम जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदड़िए तिन संत जना जयकारो राम नानक हर जप सुख पाया मेरी जिंदड़िए सब दुख निवारण हारो राम सारसना धन धन है मेरी जिंदड़िए गुण गावै हर प्रभ केरे राम ते श्रवण भले सोभनीक है मेरी जिंदड़िए हर कीर्तन सुनै हर तेरे राम सो सीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए जो जाए लगे गुर पैरै राम गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए जन हर हर नाम च तेरे राम ते नेत्र भले प्रवान है मेरी जिंदड़िए जो साधु सतगुर देख राम ते हस्त पुनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए जो हर रस हर हर लेख है राम तिस जान के पग नित पूजी है मेरी जिंदड़िए जो मार्ग धर्म चले सह राम नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए हर सुन हर नाम ने सह राम तरस पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए सब हर हर नाम से आवै राम पौन पानी बसंतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम वाण त्रिण सब आकार है मेरी जिंदड़िए मुख हर हर नाम से आवै राम नानक ते हर दर पै

मते राम जिस अंतर हिरदा सोदा है मेरी इंद्रिय तिन जन सब डर सुट कते राम हर निरपव नाम पति जिया मेरी जिंदड़िए सब चख मारन दुष्ट कुपते राम गुर पूरन पूरा नानक सेविया मेरी जिंदड़िए जन पैरी आन सब कते राम सो ऐसा हर नित सेविये मेरी जिंदड़िए जो सब दू साहेब वड्डा राम जिन एक मन एक इरादिया मेरी जिंदड़िए तिना नाही किसै दी किछ चड्डा राम गुर सेविये हर मैल पाया मेरी जिंदड़िए चख मारन सब निंदक कंडा राम जन नानक नाम ते आया मेरी जिंदड़िए तुर मस्तक हर लिख छड्डा राम बिहागड़ा महला चौथा सब जी तेरे तू वरतदा मेरे हर प्रभ तू जाना है जो जी कमाई राम हर अंतर बाहर नाल है मेरी जिंदड़िए सब वेख मन मुकराइए राम मन मुखा नो हर दूर है मेरी जिंदड़िए सब बिरथी काल गवाइए राम जन नानक गुरमुख त्याया मेरी जिंदड़िए हर हाजर नदरी आइए राम से भगत से सेवक मेरी जिंदड़िए चो प्रभ जो प्रभ मेरे मन पाने राम से हर दरगह पहनाया मेरी जिंदड़िए एहने साज माने राम तिन कै संग माले उतर है मेरी जिंदड़िए रंग राते नदर निशाने राम नानी की प्रभ बेनती मेरी जिंदड़िए मिल साधु संग अघाने राम हे रसना जप गोविंदो मेरी जिंदड़िए जप हर हर तिसना जाए राम जिस दया करे मेरा पार ब्रह्म मेरी जिंदड़िए तिस मन नाम वसाए राम जिस पेटे पूरा सतगुरु मेरी जिंदड़िए सो हर धन निध पाए राम वड भागी संगत मिलाए मेरी जिंदड़िए नानक हर गुण गाए राम थान तनंतर रब रहा मेरी जिंदड़िए पार ब्रह्म प्रभ दाता राम ताकांत ना पाया मेरी जिंदड़िए पूर्ण पुरख विधाता राम सर्ब जिया प्रत पालदा मेरी जिंदड़िए जो बालक पित माता राम सह सियाणप नह मिले मेरी जिंदड़िए जन नानक गुरमुख जाता राम छकायक बिहागड़ा महला पंजवां चंत घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का एक अचंभव देखिया मेरे लाल जियो जो करे सु धर्म न्याय राम हर रंग अखाड़ा पाए ओन मेरे लाल जियो आवन जान सवाए राम आमन ता जाना तिने की आजन मे दिन सिर जिया एक ना मेल सतगुर मैल बुला एक परम भूले फिर दिया अंत तेरा तू है जान है सब मोर है असमाए सच कहे नानक सुनो संतो हर वरतै धर्म न्याय आवो मिलो सहेलियो मेरा लाल मेरे लाल जियो हर हर नाम अराधे राम कर सेवो पूरा सतगुरु मेरे लाल जियो जम का मार्ग साधे राम मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगह शोभा पाइये जिनको विधाते तोरो लिखिया तिना रहन देन लिव लाइये हम ममता मोह छुटा जा संग मिलिया साधे जन कहे नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अराधे कार जोड़ियो संत कतर होए मेरे लाल जियो अबनासी पुरख पूजे हराम बोबित पूजा खोजिया मेरे लाल जियो है मन तन सब अर्पे हराम मन तन धन सब प्रभु केरा क्या को पूज चढ़ावै जिस होए कृपाल दयाल स्वामी जो प्रभ अंक समावै भाग मस्तक होए जिस कहे तिस गुरु नाल समेहा जन कहे नानक मिल सा संगत हर हर नाम पूजेहा वै दिस खोज धाम फिरे मेरे लाल जियो हर पायड़ा कर आए राम हर मंदिर हर जियो साजिया मेरे लाल जियो हर तिसमें रह समाए राम सर्बे समाणा आप स्वामी गुरमुख प्रगट होया मिटिया नेरा दुख नाठा अम्यो हर

रचोया। जय देख जय देखा तहा स्वामी पार ब्रह्म सब ठाए, ए जन कहे नानक सतगुरु सतगुर मिलाया, हर पायड़ा करे राग बिहागड़ा महला पंजवा। आत

गोपाल दयाल गोविंद लालना मिलाओ कंतनी माणिया नैन तरसन दर्श परसन नैनी रहन बिहानिया ज्ञान अंजन नाम बिंजन पय सगल सिगारा नानक पयम पय संत जपय जम पय मेल कंत हमारा लाख उलाने मोह हर जब लग नह मिले राम लाख उलाने मोहे हर जब लग नह मिले राम मिलन को करो उपाव किच हमारा नह चले राम चल चित बित अनित प्रे प्रे बिन कवन विधि न तीजिय खान पान सिगार बिरथे हर कंत बिन क्यों जीजिय आस प्यासी रह दिनियर रह न सकिय एक तिलय नानक पयम पसंत दासी तो प्रसाद मेरा फिर मिलय सेज अनेक प्रिय संग दर्शन पाय राम अवगण मोहे अनेक कत मैल बुलाय राम निर्गुण निमाणी अनाथ बिनवय मिलो प्रभ कृपा निधे प्रम पीर खोय सह सोय प्रभ पल पेखत नव निधे

हर हर पाया राम, इच पुनी मन शांत तपत बुझाया राम, सफला सो दिन सरैणे सुहावी आनंद मंगल रसकना, प्रगटे गोपाल गोविंद लालन कमल रसना गुणपन, ब्रह्म लोभ मोह विकार थाके मिल सखी मंगल गाया, नानक पयम पै संत जम पै जिन हर हर संयोग मिलाया, बिहागड़ा महला पंजवा कर कृपा गुरपार ब्रह्म पूरा अंदर नाम वखाणा राम, अमृत बाणी उचरा हर जस मिठा लागे तेरा पाणा राम, कर दया मया गोपाल गोविंद कोई नाही तुझ बिना, सम्राथ गाथे अपार पूर्ण जियो तन तन तुम मना, मूर्ख मुगदा नाथ चंचल बलही नीच जाना, बिनवंत नानक सरन तेरी रख लियो अवन जाना, साधा सरणी पाई है हर जियो गुण गावे हर नीता राम, तूर भगतन की मन तन लगो हर जियो सपत पुनीता राम, पतिता पुनीता होए तिन संग जिन विधाता पाया, नाम राते जी दाते तिन नित देह चढ़ै सवाया, रिद सिद्ध नाम निध हर जप जिनी हर जियो से पूरे सहाराम, बहुत खजाना तिन पै हर जियो हर कीर्तन लाहाराम, काम क्रोध न लोभिया पै जो जन प्रभ सेवरात्या, एक जन एक मन राम कह रंग मात्या, लग संत चरणी पड़े सरनी मन तिनायो महा, बिनवंत नानक जिन नाम पुल्लै

हर हत्या आया संत प्रसार तरे भव जल पूर्व लिखिया पाया वजी वधाई मन सां त्याई मिलिया पुरख अपारी बिनवंत नानक सिमर हर हर इच कुनी हमारी। बिहागड़ा महला पंजवा घर दूजा एक ओंकार सतनाम गुर प्रसाद वाद सुख न रहनड़िए प्रे प्रेम लगा घाट दुख नींदड़िए परसो सदा पगा पग धूर बांचो सदा जाचो नाम रस बैरागनी प्रे रंग राती सहज माती महा दुरमत त्यागनी गह पुजाली नी प्रेम पीनी मिलन प्रीतम सच मगा बिनवंत नानक धार कृपा राहो चरण संग लगा। मेरी सखी सहेलड़ी हो प्रभु का चरण लगा मन प्रे प्रेम कणा हर की भगत मंग है हर भगत पाय प्रभु से आय जय मिल जय हर जना मान मोह बेकार तजिय अर्प तन धन एहो मना। बड पुरख पूर्ण गुण संपूर्ण प्रमपीर हर हर मिल पगै बिनवंत नानक सुन मंत्र सखिय हर नाम नित नित नित जप है हर नार सुहागणे सब रंग माने राण न बैसई प्रपुरख चिराणे न दुख पावै प्रभ त्यावै तन ते वडभागिया सुख सहि सोवै पिकिल बिक खोवै नाम रास रंग जागिया। मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रे बचन मीठे पाणे बिनवंत नानक मन इच पाई हर मिले पुरख चिराणे पित गृह सोहलड़े कोड़ नंदा मन तन राव रया प्रपरमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री धर गोविंद पतत उदाहरणो प्रभ कृपा धारी हर मुरारी पय सिंध सागर तारणो। जो सरनावै तिस कंठ लावै बिल स्वामी संदा बिनवंत नानक हर कंत मिलिया सदा केल करंदा बिहागड़ा महला पंजवां हर चरण सरोवर तै करो निवास मना कर मजन हर सचे सब किल बिख नास मना कर सदा मजन गोबिंद सजन दुख अंधेरा नासे जन्म मरण ना होए तिसको कटै जम कै फासे मिल साथ संगे नाम रंगे तहां पूर्ण आसो बिनवंत नानक धार कृपा हर चरण कमल निवासो तह आनंद विनोद सदा अनहद सदा अनहद चुनकारो राम मिल गावै संत जना प्रभ का जयकारो राम मिल संत गावै खसम पावै हर प्रेम रस रंग भिनिया हर लाभ पाया मिटाया मिले श्री विछुनिया गह पूजा लीने दया कीने प्रभ एक अगम अपारो बिनवंत नानक सदा निर्मल सच शब्द रोण चुनकारो। सुन वड भागिया हरे अमृत बाणी राम जिन को कर्म लिखी तिस हृदय समाणी राम अकथ कहानी तिनी जानी जस आप प्रभु कृपा करे अमरथिया फिर न मुआ कल कलेसा दुख हरे हर शरण पाई तज न जाई प्रभ प्रीत मन तन पाणी बिनवंत नानक सदा गाई है पवित्र अमृत बाणी। मन तन गलत पाए किछ कह न जाई राम जिस दे उपजियड़ा तिन लिया समाई राम मिल ब्रह्म ज्योति ओत पोती उदक उदक समाया जल थल मैयल एक रव्या नह दूजा दृष्टाया। बाण त्रिण त्रिपण पूर पूर्ण कीमत कौन ज कह न जाई बिनवंत नानक आप जान जिन्हें बंत बनाई। बिहागड़ा महला पंजवा खोजत संत फिराए प्रव्याण प्रभ प्राणे अधारे राम तान तान कीन पया बिन मिलत प्यारे राम प्रभ मिलो प्यारे मया तारे कर दया लाड लाए लीजिए देहो नाम अपना जपो स्वामी हर दर्श पेख है जीजिए समरथ पूर्ण सदा ने चलू चगम पारे बिनवंत नानक धार कृपा मिलो प्राण प्यारे। जापता वर्त कीने पेखन को चरना राम तपना कसै बोझ बिन स्वामी सरना राम प्रभ सरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है अनाथ निर्गुण कछ न जाना मेरा गुण अवगुण न बिचारी है दीन दयाल गोपाल प्रीतम समरथ कारण करना नानक चातरिक हर बूंद मांगै जप जीवा हर हर चरना। अम्यो सरोवरो पियो हर हर नामा राम संत संग मिला जब पूर्ण कामा राम सब काम पूर्ण दुख विदारण हर निमक मनो न बिसरै आनंद आनंद सदा साचा सर्व गुण जगदीसरै
अगण तू चे पाठा करो अगम जाको धामा बिरवंत नानक मेरी इच पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुनगावन हारे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत पुराने ताकि महिमा के तगना, हर बिसर नाही प्याण प्यारे चितवंत दर्शन सदमना। सब दिवसाय गय कंठलाए प्रभु च गामे अपारे, बिनवंत नानक सबल सब के च प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवां चंत आन काय रातड़िया वट दुहेली राम, पाप कुमाऊं दिया तेरा कोय न बेली राम। कोय न बेली होए तेरा सदा पछोतावै, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदौ से दे आवै। तर वर विछुने न पात जुटते जम मग गौनी अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिर दुहेली। तू वल वंच लूक रहे सब जाने जानी राम, लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम। किरत कमाने दुख सौ पुराणी नेक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया। एक सर के नाम बाजो आन का सियाणी, बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोए लुभाणी। बीच न कोय करे किरत कण विछुड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया आप कुमाया महामोहनी रातिया, गुण गोविंद गुरमुख न जपया तपत थम गल लातया। काम क्रोध अहंकार मुठा कोय ज्ञान पुछ तपया, बिनवंत नानक संजोग भूला हर जा प्रसन्न न जपया। तुझ बिन को नाही प्रभ राखन हारा राम, पद उदाहरण हर बिर तुम्हारा राम। पद उदाहरण सन स्वामी कृपा ने दयाला, अंधकूप ते उदर करते सगल घट प्रतपाला। सरन तेरी खटमा बेड़ी एक नाम दे आधारा, बिनवंत नान कर दे राखो गोविंद दीन दयारा। सो दिन सफल गणिया हर प्रभ मिलाया राम, सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम। सब सुख प्रगटिया दुख दूर पचै पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद साधही गुण गोपाल नित गाई है, पाई साध संगे मिल रंगे बोड़ जोड़ न ताई है। गय कंठ लाए सह सुभाए आदि कंकर आया, बिनवंत नान क्या मिलया बोड़ कतौ न जाया। बिहागड़ा महला पंजवां चंत सुनो बेनंतिया स्वामी मेरे राम, कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कर कलेसै भंजना, शरण तेरी रख लियो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कह प्रभ ने रहो ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख लियो कर के चेरे। तू सम्राट सदा हम दीन पिखारी राम, माया मोह मगन कड लियो मुरारी राम। लो मोह विकार बाध्यो नेक दुख मामने, अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कारण अनुग्रह पद पावन बजून परम तिहारी, बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण अधारी। तू सम्राट वड़ा मेरी मथोरी राम, पाला कित घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोध अपार करते मैं नीच किशुना कछुना जाना, रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महाचंचल दो कर कर जोरी, नानक सरन सम्राट स्वामी पैज रखो मोरी। जाते विछड़िया ते नाम मिलाया राम, साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदानी के कल्याण में प्रगट पए, से जा स्वावी संग प्रभ कहे अपने प्रभ कर लय। छोड़ चिंता चिंत होए बौड़ दुख दुख न पाया, नानक दर्शन पीख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवां चंत

संग तेरा कछ न चाले बिना गोविंद नामा। देश वेश सुवर्ण रूपा सगल ऊने कमा। पोतर कलतर न संग सोभा हस कोर विकारी। बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथिया संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद भरे जागत कतना ही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम। बिललाहे केते महामोन मोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाण उपावथा के जह पावत तह जाही। आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र घट घट आही। बिनवंत नानक जिन

ऐसी मरनी जो मरे बोर न मरना होए महला की जा क्या जाना क्यों मरेंगे कैसा मरना होए जेकर साहे मनो ना विसरे ता सहला मरना होए मरना ते जगद नरे जीव्या लोड़े सब कोए गुर प्रसादी जीव तुमरा हुक्म बुझे सोए नानक ऐसी मरनी जो मरे ता साध जीवन होए पौड़ी जय आप कृपाल होए हर स्वामी ता अपना नाम हर आप जपावै आपे सतगुर मेल सुख देवै अपनिया सेवक आप हर पावै अपनिया सेवका की आप पैज रखै अपनिया भगतां की पैरी पावै धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ न आवै जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा होर कीती चख चख आवै जावै सलोक महला तीजा राम राम करता सब जग फिर फिरै राम न पाया जाय अगम गोचरिया तबडा तुल न तुलिया जाए कीमत किन न पाया कित न लया जाए गुर कै शब्द भेदिया इन बिद वस्या मन आए नानक आप म्यो है गुर कृपा ते रहया समाए आपे मिलया मिल रहा आपे मिलया आए महला तीजा एह मन ए तन नाम है जित सदा सदा सुख होए तोटा मोल न आवै लाहा सत ही होए खादा है खर्चिया है तोट न आवै सदा सदा ओ दे सहसा मोल न होवै हानत कदे न होए नानक गुरमुख पाईऐ जाको नदर करे पौड़ी आपे सब घट अंदर आपे ही बाहर आपे गुप्त वरतदा आपे ही जाहर सा जुग छती गुबार कर वरत्या सुन्ना हर उथे वेद पुराण सास्ता आपे हर नर हर बैठा ताड़ी लाए आप सब दूही बाहर अपनी मित आप जानदा आपे ही गोहर श्लोक महला तीजा हों मैं विच जगत मुआ मरदे मरदा जाए जिचर विच दम है पिचर न चेतई की करेग अगै जाए ज्ञानी होए सुच तन होए अज्ञानी अंध कमाए नानक इथे कमावे सो मिलाए अगै पाए जाए महला तीजा तुर खसमे का हुक्म पया विन सतगुर चेतिया न जाए सतगुर मिलिया अंतर रव रहा सदा रहा लिवलाए दम दम सदा संभालदा दम न बिरथा जाए जन्म मरण का भौ गया जीवन पदवी पाए नानक एह मर्तबा तिसनो दे जिसनो कृपा करे रे जाए पौड़ी आपे दाना बीनिया आपे प्रधाना आपे रूप दिखालदा आपे लाए ध्याना आपे मुनि वरतदा आपे कथा ज्ञाना कौड़ा किसे न लग गई सबना ही पाना उस्ताद भर न सकिया सद सद कुर्बाना श्लोक महला पहला कली अंदर नानका जिन्ना दा अवतार पुत पुत जनूरा ती जनूरी जोरू जिन्ना दा सिकदार महला पहला हिंदू मूले भूले खुटी जाही नादर कहा सी पूज कराही अंधे गुंगे अंधार पाथर ले पूजे मुक्त गवार ओहे जी आप डुबे तुम कहा तरणहार पौड़ी सब क्यों तेरे वास है तू सच्चा साहो भक्त तेरंगे कह पूरा वे साहो अमर भोजन नाम हर राज राज जन खाहो सब पदार्थ पाइन सिमरन सच लाहो संत प्यारे पार बनाम नानक हरिया गा मैं गाहो श्लोक महला तीजा सब किछ हुक्मे आवदा सब किछ हुक्मे जाए जे को मूर्ख आपो जाणै दांद कमाए नानक हुक्म को गुरमुख बूझै जिसनु कृपा करे रजाए महला तीजा सो जोगी जुगत सो पाए जिसनु गुरमुख नाम प्राप्त होए तिस जोगी की नगरी सब को वसै भेखी जोग न होए नानक ऐसा विरला को जोगी जिस घट प्रगट होए पौड़ी आपे जन तो पाइन आपे आधार आपे सुखम भालिया आपे पासार आपे काती हो रहे आपे वड परवार नानक मंगै दान हर संतारे नार होर दातार न सुजई तू देवन हार सुद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त जूनी सहभंग गुर प्रसाद राग वढ़ंस महला पहला घर पहला
अमली अमल ना अंबड़ा मच्छी नीर ना होए जो रत सया अपने तिन पावे सब कोए हो वारी वन्या करनी है वन्या तो साहिब कह ना वै रहाओ साहिब सफले रुकड़ा अमृत जा का नाओ जिन पिया ते तृप्त पाए हो तिन बलहार जाओ मैं की नदर न आवई वस हबिया नाल तिखा तिहाया क्यों लह जा सर पीतर पाल नानक तेरा बाणिया तू साहेब मैं रास मन ते धोखा तो तां लह जा सिफत करी अरदास वड़ हंस महला पहला गुणवंती सौरा व्या निर्गुण कुके काए जे गुणवंती थी रहे तां पी सौरा मन जाए मेरा कंतर सालू की धन अवरा रावे जी राव करनी कावन जे थी है जे मन धागा होए मानक मुल न पाई है लीजै चित परोए राहो दसाई ना जुलाए अखां मड़ियास तै सह नाल अकूणा क्यों थी वै घर वास नानके की बाहरा दूजा नाही कोए तैसे लगी जे रहे पी सौरा वै सोए वडहंस महला पहला घर दूजा मोरी रुण चुन लाया भैने सामने आया तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया तेरे दर्शन विटो खनिया वन्या तेरे नाम विटो कुर्बानो जा तू ता मैं मान किया है तुद मन किया मेरा मानो चूड़ा भन पलंग से मुंदे सण बाही सण बाहा इते वेस करेंदिये मुंदे सौरा तो अवराहा नाम नियार न चूड़िया ना से वंगुड़िया जो सकंठ न लगिया जलन से बाहड़िया साब सैया सो रावण गैया हो दादी का दर्जावा माली हो सकरी जीता सह एक न पावा माठ कुंदाई पट्टिया पर यह मांग सिंदूरे अगे गई न मनिया मरो विसूर विसूरे मैं रोवंदी सब जगरुना रुनड़े वनो पंखेरू एक ना रुना मेरे तन का बिरहा जिन हो फिर हो विशोरी सुपन आया पी गया मैं जल भरिया रोए आए न सका तुझ कान प्यारे भीज न सका कोए आओ सुभागी नी दड़िए मत सौ देखा सोए तय साहेब की बात जी आख कौ नानक क्या दीजे सीस वडे कर व्यासन दी जय बिन सिर सेव करी जय क्यों न मरी जय जीड़ा ना दी जय जा सो भया विडाना वडहंस महला तीजा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन मैले सब किश मैला तन धोता है मन हच्छा ना होए जगत भरम भुलाया विरला बुझै कोए जप मन मेरे तू एको नाम सतगुर दिया मोको हो निदान रहा सिद्धा के आसन जे सिखै इंद्री वस कर कमाए मन की मैल ना उतरै हमै मैल ना जाए इस मन को हो संयम को नाही मिन सतगुर की शरणाए सतगुर मिलिए उल्टी पई कहना किछु ना जाए पंत नानक सतगुर को मिल दो मरै गुर कै शब्द फिर जीवै कोए ममता की मन उतरै मन अच्छा होए बड़ हंस महला के जा नानक सतगुर सेवियै नदरी सेवा होए नदरी एह मन वासिया वै नदरी मन निर्मल होए मेरे मन चेत सच्चा सोए एको चेत है तां सुख पावे फिर दूग न मूले होए रहा नदरी मर कै जीवियै नदरी शब्द वसै मन आए नदरी हुकम बुझियै हुक्मे रहे समाए जिंजे बाहर ना चख्यो साजे वजल जाओ अन रस सादे लग रही दुख पाया दूजै पाए सबना नदरिए सबना नदरे कै आपे फर्क करे नानक सतगुर मिलिया फल पाया नाम वडाई दे वडहंस महला तीजा माया मोह गुवार है बिरग्यां बिन गुर बिन ज्ञान न होई शब्द लगे तिन बूझिया दूजै परज विगोई मन मेरे गुरमत करनी सार सदा सदा हर प्रभ रवै तां पावै मुख द्वार गुणा का निदान एक है आपे देता को पाए बिन नावे सब विछड़ी गुर कै शब्द मिलाए मेरी मेरी कर दे घट गए तिना हाथ के हो ना आया सतगुर मिलिया सच मिले सच नाम समाया आसा मन साहिब शरीर है अंतर जोत जगाए नानक मन मुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए वडहंस महला तीजा
ਸੁਹਾਗਣੀ ਸਤਮੁਖ ਉਜਲਾ ਗੁਰ ਕੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਸਦਾ ਫਿਰ ਰਵੇ ਆਪਣਾ ਵਿੱਚੋ ਆਪ ਗਵਾਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤੂੰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖੋਂ ਹਰ ਦਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖੋਂ ਹਰ ਦਿਆ ਬੁਝਾਏ ਰਹਾਉ ਦੁਹਾਗਣੀ ਖਰੀਆ ਬਿਰਲਾ ਦਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮੈਲ ਨਾ ਪਾਏ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਕਰੂਪੀ ਦੂਖ ਪਾਵੇ ਆ ਗਏ ਜਾਏ ਗੁਣਵੰਤੀ ਨਿਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਅਗੁਣਵੰਤੀ ਕਾਮਣੀ ਦੁਖ ਲਾਗੈ ਬਿਰਲਾਏ ਸਭਨਾ ਕਾ ਪਧਾਰੇ ਕਹੇ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾਮੇ ਲਈਆਂ ਲਾਏ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸਦ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗਾ ਗੁਰਸਬਦੀ ਸਾਧਿਆਇਆ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿ ਸਮਾਣੀ ਹਰ ਜੀਉ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਹਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾਇਆ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਰਹਾਉ ਬ੍ਰਹਮ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਗਾਸੀ ਮਾਇਆ ਮੁਖ ਸਾਰਾ ਮਹਾਂਦੇਵ ਗਿਆਨੀ ਵਰਤਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਤਾਮਸ ਬਹੁਤ ਅਹੰਕਾਰ ਕਿਸਨ ਸਦਾ ਅਵਤਾਰੀ ਰੁਦਾ ਕਿਤ ਲਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਰਤੇ ਜੋਗੀ ਅੰਤਰ ਚੁਕੈ ਮੋਹ ਗੁਬਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਨਿਸਾਰਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਸਾਚਾ ਨਾਇ ਰਤੇ ਬੈਰਾਗੀ ਪਾਇਨ ਮੁਖ ਦੁਆਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸਭ ਅੰਤਰ ਸਭਨਾ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ ਨਾਨਕ ਇਕ ਸਿਨ ਮੈਂ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਭਨਾ ਦੀਵਾਨ ਦਯਾਲਾ ਵਡਹੰਸ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚ ਸੰਜਮ ਤਤ ਗਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਚੇ ਲੱਗੈ ਧਿਆਨ ਗੁਰਮੁਖ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਸਦਾ ਨਿਭੈ ਚੱਲੈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਾਉ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤ ਪਾਤ ਸੱਚ ਸੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਿਖਾਈ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਸਨੂੰ ਆਪ ਕਰੇ ਸੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਆ ਵਡਾਈ ਦੇਵੈ ਸੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਨਕ ਪਰਵਾਰ ਹੈ ਸਧਾਰ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਰਸਨਾ ਹਰ ਸਾਧ ਲੱਗੀ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਾਚੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਟੋ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਰਹਾਉ ਅੱਖੀ ਸੰਤੋਖਿਆ ਏਕ ਲਿਵ ਲਾਏ ਮਨ ਸੰਤੋਖਿਆ ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਗੁਆਏ ਦੇਸਰੀ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਸਬਦ ਹਰਨਾਏ ਨਾਮ ਪਰਮਲ ਹਿਰਦੈ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਜਿਸ ਵਡ ਭਾਗ ਗੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਹਿਜ ਬੈਰਾਗ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚ ਸਮਾਏ ਇਹ ਮਨ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਤੋਂ ਪਾਏ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਕੀ ਮਨ ਲੈ ਰਜਾਏ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਲ ਗੁਆਏ ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਪਰਮੇ ਭੂਲਾ ਫਿਰੈ ਸੰਸਾਰ ਮਰ ਜਨ ਮੈਂ ਜਮ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ਨਾਨਕ ਸੇਵਡ ਭਾਗੀ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹਉ ਮੈਂ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਦੁਇ ਨ ਵਸੈ ਕਠਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋ ਵਈ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ ਹਰ ਚੇਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਹੁਕਮ ਮੰਨੈ ਤਾਂ ਹਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ ਰਹਾਉ ਹਉ ਮੈਂ ਸਭ ਸਰੀਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਉਪਦ ਹੋਏ ਹਉ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਗੁਬਾਰ ਹੈ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਝ ਨਾ ਸਕੈ ਕੋਈ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬੁਝਿਆ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਜੀਓ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਹਉ ਮੈਂ ਗਈ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਏ ਸੱਚ ਕਮਾਵੈ ਸੱਚ ਰਹੈ ਸੱਚੇ ਸੇਵ ਸਮਾਏ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੇਜ ਏਕ ਏਕੋ ਪ੍ਰਭ ਠਾਕੁਰ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਰਾਵੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰੇਮ ਮਨਿਆਸਾ ਗੁਰਪੂਰਾ ਮੇਲਾ ਵੈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹਉ ਵਾਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕਉ ਜਾਸਾ ਰਹਾਉ ਮੈਂ ਅਵਗਣ ਭਰਪੂਰ ਸਰੀਰੇ ਹਉ ਕਿਆ ਕਰ ਮਿਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪੂਰੇ ਜਿਨ ਗੁਣਵੰਤੀ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਾਇਆ ਸਾ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹਉ ਕਿਉ ਮਿਲਾ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਹਉ ਕਰ ਕਰ ਥਾਕਾ ਉਪਾਵ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਨਾਨਕ ਗਰੀਬ ਰਾਖੋ ਹਰ ਮੇਰੇ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮੇਰਾ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੀ ਹਉ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੋਭਾਣੀ ਹਉ ਕਿਉ ਕਰ ਫਿਰ ਕੋ ਮਿਲੋ ਇਆਣੀ ਸੋ ਫਿਰ ਭਾਵੈ ਸਾ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਈ ਫਿਰ ਕੋ ਮਿਲੈ ਸਿਆਣੀ ਰਹਾਉ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੌ ਕਿਆ ਕਰ ਫਿਰ ਪਾਵਾ ਤੇਰੇ ਅਨੇਕ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਫਿਰ ਚੇਤਨਾ ਆਵਾ ਜਿਨ ਪਿਆਰ ਰਾਵਿਆ ਸੋ ਭਲੀ ਸੁਹਾਗਣ ਸੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਹੋ
क्या करी दुहागण नित सुहागण सदा फिर रावे मैं कर्महीन का भी गल लावे तू फिर गुणवंता हो अवगुणियारा मैं निर्गुण बख्श नानक बेचारा वडहंस महला चौथा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन वड्डी आस हरे क्यों कर हर दर्शन पावा हो जाए पुछा अपने सतगुर है गुर पुछ मन मुग्ध समझावा भोला मन समझे गुर सबदी हर हर सदा ध्याए नानक जिस नदर करे मेरा प्यारा सो हर चरणी चित लाए हो सब वेस करी फिर कामण जे हर प्रभ साचे पावा सो फिर प्यारा मैं नदर न देखे क्यों हो क्यों कर धीरज पावा जिस कारण हो सिगार सिगारी सो फिर रत्ता मेरा अवरा नानक तन तन तन सुहागण जिन फिर रावियड़ा सच सवरा हो जाए पुछा सुहाग सुहागण तुसी क्यों फिर पायड़ा प्र मेरा मैं ऊपर नद करी फिर सच है मैं छोड़ियड़ा मेरा तेरा सब मन तन जियो करो हर प्रभ का एत मार्ग भैण मिलिया अपने नाल प्रभ नदर कर देख नानक जोत जो तीर लिया जो हर प्रभ का मैं देस नेहा तिस मन तन अपना देवा नित पखा फेरी सेव कमावा तिस आगे पानी ढोवा नित नित सेव करी हर जन की जो हर हर कथा सुनाए तन तन गुरु गुर सतगुर पूरा नानक मन आस पुजाए गुर सज्जन मेरा मेल हरे जित मिल हर नाम ते आवा गुर सतगुर पासों हर गोष्ट पूछा कर सांझी हर गुण गावा गुण गावा नित नित सद हर कै मन जीव नाम सुन तेरा नानक जित वेला विसरै मेरा स्वामी तित वेला मर जाए जियो मेरा हर वेखण को सब कोई लोचै जो सो वेख जसा विखाले जिसनु करे मेरा प्यारा सो हर हर सदा संभाले सो हर हर नाम सदा संभाले जिस सतगुर पूरा मेरा मिलिया नानक हर जन हर इके होए हर जप से ती जप हर से ती रलिया वडहंस महला पंजवा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद अतूचा ताका दरबारा अंत नाही किछ पारा वारा कोट कोट कोट लख धावै एक तिल ताका मैल न पावै सुहावी कौन सुवेला चित प्रमेला रहाव लाख भगत जाको अराधा लाख तपीसर साप ही सदा लाख जोगीसर करते जोगा लाख भोगीसर भोगै भोगा घट घट वसै जाना थोरा है कोई साजन परदा तोरा करो जतन जे होए मेहरबाना ताको दे जियो कुर्बाना फिरत फिरत संतन पै आया दुख भ्रम हमारा सगल मिटाया मैल बुलाया प्रभ अमृत पुंचा कहो नानक प्रभ मेरा ऊचा वडहंस महला पंजवा धन सुवेला जद दर्शन करना हो बलिहारी सतगुर चरना जी के दाते प्रभ प्रीतम प्रभ मेरे मन जीवे प्रभ नाम चितेरे रहाव सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सुजानी सच हुक्म तुम्हारा तख्त निवासी आय न जावे मेरा प्रभ अविनाशी तुम मेहरवान दास हम दीना नानक साहेब भरपुर लीना वडहंस महला पंजवा तू बेअंत को बिरला जाना गुर प्रसाद को शब्द पछाणा सेवक ही अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे रहो दयाल पुरख मेरे प्रभदाते जिस जनाओ तिन है तुम जाते सदा सदा जाई बलिहारी ये तो देखो वे उठ तुम्हारी मोहि निर्गुण गुण किछु न जाता नानक साधु देख मन राता वडहंस महला पंजवा अंतर जामी सो प्रपूरा दान दे साधु की धूरा कर कृपा प्र दीन दयाला तेरी ओट पूर्ण गोपाला रहाओ जल थल महियल रहा पर पूरे निकट वसै नाही प्रभ दूरे जिसनु नदर करे सो त्याए आठ पैर हर के गुण गाए जी जंत सगले प्रत पारे सरन पर्यो नानक हर द्वारे वडहंस महला पंजवा तू वडदाता अंतर जामी सब मैं रव्या पूर्ण प्रभ स्वामी मेरे प्रभ प्रीतम नाम अधारा हो सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ तेरी शरण सत गुर मेरे पूरे मन निर्मल हुए संतां तूरे चरण कमल हृदय उतारे
तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा नानक नाम जपत सुख पावा। बढ़ंस महला पंजवा साध संग हमर हारे अमृत पी जय। ना जियो मर न कबहु छी जय। वड़ पागी गुर पूरा पाई जय। गुर कृपा ते प्रभु ते आई जय। रहा और तंजवार हर माणक लाला। सिमर सिमर प्रभ निहाला। जतक पेखो सा जातक अत पेखो साधु सरना। हर गुण गाय निर्मल मन करना। काट कर अंतर मेरा स्वामी बूठा। नानक नाम पाया प्रभ तूठा। वढ़ंस महला पंजवा विसरना ही प्रभ दीन दयाला। तेरी शरण पूर्ण कृपा ला रहा। जय चित आवै सुथान सुहावा। जित वेला विसरता लागे हावा। तेरे जी तू सद ही साथी। संसार सागर ते काट दे हाथी। आमन जाना तुम्हें किया जिस तू राख तिस दुख न थी। आ तू एको साहेब अवर न होर। बिनो कर नानक कर जोर। वढ़ंस महला पंजवा तू जनाए ता कोई जाने। तेरा दिया नाम खाने। तू अजर च कुदरत तेरी बिखमा तेरी बिस्मा रहाओ। तू आपे कारण आपे करना। हुक्मे जमन हुक्मे मरना ते नाम तेरा मनता ने आधारी। नानक दास बख्शी तुम्हारी। वढ़ंस महला पंजवा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरा अंतर लोचा मिलन की प्यारे हो क्यों पाई गुरपुरे। से जे सो खेल खिलाई है बालक रह न सकै बिन खीरे। मेरा अंतर भुख न उतर माली जे सो भोजन मैं नीरे। मेरे मन तन प्रेम पुरान का बिन दर्शन क्यों मन धीरे। सुन सज्जन मेरे प्रीतम भाई मैं मेलो मित्र सुखदाता। हो जी की मेरी सब वेदन जाने ने सुना वह हर किया बाता। हो एक खिण तिस बिन रह न सका ज्यों चातरिक जल को बिल लाता। हो क्या गुण तेरे सर संभाली मैं निर्गुण को रख लेता। हो पई उडीनी कंत कहो अम्माली सो फिर कद नैनी देखा। सब रस भोगण विसरे बिन फिर किता न देखा। यह कापड़ तन न सुखावे कर न सखो हो वेसा। जिन्नी सखी लाल रावया प्यारा तिना गए हम आदेसा। मैं साब सिगार बनाया माली बिन फिर काम न आवे। जैसे बात न पुछिया माली तां बिरसा जो मन सब जाए। तन तन ते सुहागणी माली जिन सो रहा समाए। हो वारिया तिन सुहागणी माली तिनके धोवा सद पाए। जिचर दूजा परम सा माली तिचर मैं जानिया प्रभ दूरे। जा मिलिया पूरा सतगुरु माली ताया सा मन सा पूरे। मैं सर्व सुख सुख पाया माली फिर सर्व रहा भरपूरे। जा नानक हर रंग माणिया माली गुर सतगुर के कै लग पैरे। वढ़ंस महला तीजा यश पदिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सच बाणी सच धुन सच शब्द विचारा। अंदर सच सलाहना धन धन वडपाग हमारा। मन मेरे सचे ना मिटो बल जाओ। दासन दासा होए रहे ता पावे सच्चा ना हो रहाओ। जेहवा सची सच रती तन मन सच्चा होए। बिन सचे और सलाहना जा सजनम सब खोए। सची खेती सच बीजना सचा बाप।

जो भाव त्यों रखसी आपे करे रिजाए वडंस महला तीजा। मनुआ दै दस्तान दाओ कैसे हर गुण गावे, इंद्रिय प्याव रही अधिकाई काम क्रोध नित संतावे। वाह वाह सहजे गुण रवि जय राम नाम इस युग में दुर्लभ है गुरमत हर रस पी जय राव। सब जीन मन निर्मल होवे ता हर के गुण गावे, गुरमति आप पछाण ता निज कर वासा पावे। ये मन मेरे सदा रंग राते सदा हर के गुण गाओ, हर निर्मल सदा सुखदाता मन चिंदिया फल पाओ। हम नीच से उत्तम पए हर की सरनाई, पात्र डुबदा काढ़ लिया साची वड्याई। बेख से अमृत पए गुरमत बुद्ध पाई, एको परमल पए अंतर वासना वसाई। मानस जन्म दुलंभ है जग में खटिया आए, पूरे भाग सतगुर मिले हर नाम से आए। मन में भूले बिख लगे लाजन मंगवाया, हर का नाम सदा सुख सागर साचा शब्द न पाया। मुखो हर हर सब को करे विरले हृदय वसाया, नानक जन का हृदय वसया मोख मुक्त तिन पाया। वड हंस महला पहला चंते कोंकार सदगुर प्रसाद, काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है नाता सो प्रवान सच कमाई है। जब साच अंदर होए सचा ताम सचा पाई है। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है, जिथे जाए बहिया भला कही है सुरत साब लिखाई है। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है ताम कया कहन जा तुझे कहाया। अमृत हर का नाम मेरे मन पाया, नाम मीठा मन लागा दुख डेरा टाया। सुख मन में आय वस्या जाम तय फुरमाया। नदर तो दे अरदास मेरी जिन्हें आप उपाया, ताम कया कहन जा तुझे कहाया। वारी कसम कढ़ाए किरत कमावना, मंदा किसा न आग झगड़ा पावना। न पाए झगड़ा स्वाम से थी आप वावना। जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रुआवना, जो दे सहना मन कहना आख नाही वावना। वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना, सब पाइन आप आपे नदर करे। कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे, सब कोई मीठा मंग देखे खसम भावे सो करे। किच पुन दान ने करनी नाम तुलना समसरे, नानका जन्ना मिलिया कर्म होवा तुर कदे। सब ओ पाइन आप आपे नदर करे, वढ़ंस महला पहला करो दया तेरा नाम वखाणा। सब उपाय आप आपे सर्व समाणा, सर्वे समाणा आप तू है। उपाय तंदा लाइया एक तुझ किए राजे, एक ना भिख पवाइया लोभ मोह तुझ किया मीठा। एत परम पुलाना सदा दया करो अपनी ताम नाम वखाणा। नाम तेरा है साचा सदा मैं मन पाणा, दू गया सुखाय समाणा। गावन सुरना सुगड़ सजाणा, सुरना सुगड़ सजाण गावै जो तेरा मन भाव है। माया मोह है चेत नाही एला जन्म गवाव है। एक मोड़ मुगदना चेता मूले जो आया तिस जाना। नाम तेरा सदा साचा सोए मैं मन पाणा। तेरा वक्त सुहावा अमृत तेरी बाणी, सेवक सेवा पाव कर लागा पाओ सरन पुराणी। सौ पुराणी तिना लागा जिन्नी अमृत पाया, नाम तेरा जोए राते नित चढ़े सुवाया। एक कर्म धर्म न होए संयम जाम न एक पछाणी, वक्त सुहावा सदा तेरा अमृत तेरी बाणी। हो बलिहारी साचे नावे राज तेरा कभो न जावे, राजो ता तेरा सदा ने चले कभो न जावे। चाकर ता तेरा सोए होवे जो इसे समावे, दुश्मन ता दुख न लागे लगे मुले पाप नेड़ न आवे। हो बलिहारी सदा होवा एक तेरे नावे, जुग जुगंतर भगत तुम्हारे कीर्त करे स्वामी तेरा द्वारा। जपै ता सचा एक मुरारे साचा मुरारे ताम जपै, नाम मन वसावे परमो पुलावा तुझे किया जामे चुकावे। गौर प्रसादी करो कृपा लिहो जमो उबारे, जुग जुगंतर भगत को तुम्हारे वड्डे मेरे सवा लख पारा। क्यों कर करो बिनंती हो आख न जाना, नदर करे ता साच पछाणा। साचो पछाणा ता

संग्रह अगवगण वीक्षण है आप पिछाण है गुरमत पाई वडे वड्याई सचे सलदरस पी जय नानक हर के भगत मनाली गुरमुख बिरला की जय। गुरमुख खेती हर अंतर बीजी है हर लीजय श्री जमाय राम अपने घर अंदर रस पुंज तू लाह लै प्रथाए राम लाहा प्रथाए हर मन वसाए धन खेती वापारा हर नाम त्याए मन वसाए बुझे गुर बिचारा मान मुख खेती वंज करता के तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंदर सच्चे सब सुभाए हर व्यापार से जन लागे जिन्ना मस्त मणि बड़ भागो राम गुरमति मन नहीं कर वस्या सच्चे सब बैरागो राम मुख मस्त भागो सच बैरागो साचरते विचारी नाम बिना सब जग बौरा न सदे हो मैं मारी साचे शब्द लाग मत उपजय गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिले पौ पंजन हर रावय मस्तक भागो खेती वंज सब हुक्म हुक्मो मने वड्याई हुक्मो मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बूझिया हुक्म मेल मलाई राम हुक्म लाई सहि समाए गुर का शब्द पारा सची वड्याई गुर ते पाई सहि सुवारण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन गम गोचर हुक्म रहा समाई बड़न समाला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै हो न सके जम काल जियो काल जाल जम जो न सके सच सब लिवलाए सदा सच रता मन निर्मल अमन जान रहाए दूजे पाए परम गुति मन मंग मोही जमकाल कहे नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरा अंतर तेरा निदान है बार वस्त न पाल जो पावे सो पुंज तो गुरमुख न निहाल गुरमुख न निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई मन मुख अंदले ज्ञान मन मुख अंदुले ज्ञान विहूने दूजे पाए खुआई बिना वे को छूटी ना ही सब आदि जमकाल नानक अंतर तेरे निदान है तू बार वस्त न पाल मन मेरा जन्म पदार्थ पाए कह एक सच लगे वापारा सात गुर सेवने अपना अंतर शब्द पारा अंतर शब्द पारा हर नाम प्यारा नामे नौनत पाई मन पाया मोवे आपे दुख संताप दूजे पथ गवाई हम मैं मार सच सब समान है सच रते दिखाई नानक मानस जन्म दुलंब है सत गुर बूझ बुझाई मन मेरे सत गुर सेवन अपना से जानवर भागी राम जो मन मार है अपना से प्रभु बैरागी राम से जन बैरागी सच लेव लागी अपना आप पछाणिया मत ने चलत गुड़ी गुरमुख सहजे नाम बखाणिया कामणित कारी माया मोह प्यारी मन मुख सोए रहे भागे नानक सहजे सेवा गुरे अपना से पूरे वट भागे बड़ा समान ला तीजा रतन पदार्थ मंजिया ऐसा गुरदिया बुझाई राम लाला भर भगता है गुण मैं गुणी समाई राम गुण मैं गुणी समाए जैसा बुझाए ला भगत सह सारे बिन भक्ति सुख न होई दूजे पथ कोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एत वापार लाए रतन पदार्थ मंजी है जैसा सतगुरु देव बुझाए माया मोह सब दुख है खोटाए वापार राम कूड़ बोल बिक खामणी बहु वदय विकारा राम बहु वदय विकारा सहज संसारा बिन नावे पथ खोई पड़ पड़ पंडित वाल खाने बिन बूझे सुख न होई आमन जाना कदे न चूके माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा है वपारा खोटे सरे खोटे खरे सब परखियन ते सच्चे कह दरबारा राम खोटे दरगह सुटियन उबे कर पुकारा राम उबे करन पुकारा मुक्त गुवारा मन मुख जन गुवाया बिख्या माया जिन जगत भुलाया सचा नाम न पाया मन मुख संता नाल वैर कर दुख कटे संसारा खोटे करे परखियन ते सचा दरबारा राम आप करे किस आखी है आप करे किस आखी है होर करना किछू न जाई राम जित भावे तित लाए सी ज्यो तिस दी वड्याई राम ज्यो तिस दी वड्याई आप कराई बरियाम न फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म दाता आपे बख्शे सोई गुर प्रसादी आप गुआई है नानक नाम पथ पाई आप करे किस आखी है होर करना किछू न जाई बढ़ंस महला तीजा सच्चा सौदार नाम है सच्चा वापारा राम गुरमति हर नाम वंजे अतमोड़ा पारा राम अतमोड़ा पारा सच वपारा लगे वड़ भागी
अंतर बार भक्ति रते राते सच नाम लिख लागी नगर करे सोई सच पाए गुर कै सद विचारा नानक नाम रते ते नहीं सुख पाया साचा के वापारा हो मैं माया मेल है माया मैल परी जय राम गुरमति मन रसना रस पी जय राम रसना रस पी जय अंदर पी जय सार शब्द विचारी अंतर खूहटाय अमृत भरिया शब्द काट पी अपनहारी जिस नदर करे सोई सच लागे रसना राम रवि जय नानक नाम रत से निर्मल हो रो मैं मैल परी जय पंडित ज्योत की सपड़ पड़ कूक देश किस पै करे पुकारा राम माया मोहत अंतर मैल मल लागे माया के वापारा राम माया के वापारा जग प्यारा यामन जान दुख पाई बेका कीड़ा बिकसो लागा बिष्टा माय समाई जो तुर लिखे सोय कमावे कोय न मेठन हारा नानक नाम रते तिन सदा सुख पाया होर मूर्ख कूक मुहे गवारा मूर्ख कूक मुए गावारा माया मोह मन रंगिया मोह सुधन कही राम गुरमुखे मन रंगिया दूजा रंग जाई राम दूजा रंग जाई सच समाई सच परे भंडारा गुरमुख वै सोई पूजा सच सुवरण हरा पे मेले सुवर मिले होर कहना किछु न जाए नानक बिन नावे परम भुलाया एक नाम रते रंग लाए बड़े हंस मला तीजा मन मेरे आया वा गुण संसार है सच बेड़ा राम आपे सचा बख्श लय फिर होए न फेरा राम फिर होए न फेरा अंत सच ने बेड़ा गुरमुख मिले बढ़ियाई सच रंग राते सहजे माते सहजे रह समाई सच्चा मन पाया सच वसाया सद रते अंत ने बेरा नानक नाम रते से सच समाने बहुर न पव जल फेरा माया मोह सबर लय दूजे पाए खुआई राम माता पिता सब होत है हेते पलचाई राम हेते पलचाई प्रभु कमाई मेट न सकै कोई जिन सिष्ट साजी सो कर वेखै ते जेवड़े वरण कोई मन मुखंदा तप तप खपै बिन सबदा सांत न आई नानक बिन नावै सब कोई भुला माया मोह खुआई ए जग जलता देख भज पै हर सिर नाई राम हरदास करी गुरपुर आगे रख ले वो देहो बढ़ाई राम रख ले वो सिर नाई हर नाम बढ़ाई तो जेवड़ वरण दाता सेवा लागे सेवड़ पागे जुग जुग को जाता जात सात संयम करम कुमा वह बिन बिन गुरगत नहीं पाई नानक तिसन सजू जाए जो जाए पवै हर सिर नाई जो हर मत दे साऊ पुजै होर मत न काई राम दरबार एक तू आपे दे बुझाई राम आपे दे बुझाई अवर न पाई गुरमुख रस चाखिया दर साचा सदा है साचा साचा सब सुपाखिया घर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई नानक जो नाम रते से महल पायन मत परवान सच साई वड़ संभाला चौथा छंते कोंकार सतगुर प्रसाद मेरे मन सतगुरु प्रीत लगाई राम हर हर हर हर नाम मेरे मन वसाई राम हर हर नाम मेरा मन वसाई सब दुख विसारण हारा बड़ पाकी गुरु दर्शन पाया तन तन सतगुरु हमारा उठत बैठ सतगुर सेवो जित सेविया संत प्रसांत पाई मेरे मन सतगुर प्रीत लगाई हो जीवा सतगुर देख सत्से राम हर नाम दृढ़ाए जप हर हर नाम विगसे राम जप हर हर नाम कमल पर गासे हर हर हर नाम नमन निध पाई हो मैं रोग गया दुख लातार सह समाद लगाई हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर देव मन परसे हो जीवा सतगुर देख सरसे कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा राम हो मन तन देवा तिस काट शरीर राम हो मन तन काट काट से तिस दे जो सतगुर वचन सुनाए मेरे मन बैराग पै बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए हर हर कृपा करो सुख दाते देव सतगुर चरणाम धूरा कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम हर दान देव हर पुरख निरंजन सोई राम हर हर नाम जिनी आराध्या तिनका दुख परम पोपागा सेवक पाए मिले वडपागी जिन गुरचरणी मन लागा कहो नानक राम मिलाए मिन मिल सात गुर पुरख सुख होई गुरजेवड़ दाता मैं अवर न कोई
ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਉ ਗੁਰਬਿਨ ਹਉ ਗੁਰਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਰਾਮ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਮਾਣੀ ਰਾਮ ਸਤ ਗੁਰਮੇਲ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਉ ਢੂੰਡਣੇ ਦੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਹਰ ਘਰ ਪਾਇਆ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਰ ਏਕੋ ਜਾ ਤਾਰਾ ਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਣੀ ਹਉ ਗੁਰਬਿਨ ਖਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਰਾਮ ਤਿੰਨ ਚਰਨ ਸਿਰੇ ਵਾਇਮ ਲਾਗਾ ਤਿਨ ਕਹਿ ਪਾਏ ਰਾਮ ਹਰ ਹਰ ਚਰਨ ਸਿਰੇ ਵੈ ਤਿਨ ਕਹਿ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਇਆ ਤੂੰ ਉਰਦਾਤਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਮੇਰਾ ਸਰਦਾ ਪੂਰ ਹਰ ਰਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਮੇਲ ਮੇਰੀ ਸਰਦਾ ਪੂਰੀ ਅੰਦਿਨ ਰਾਮ ਗੁਣ ਗਾਏ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪ੍ਰਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਹਉ ਵਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਪਿਆਰੇ ਰਾਮ ਹਰ ਨਾਮ ਸੁਣਾਏ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤ।

रोमन सकल विकारो गाफल संसारो माया कारण रोवे चंगा मंदा किछ सूझै नाही ए तन ए वै खोवै एथे आया सबको जासी कूड़ करो अंकारो नानक रुना बाबा जानिए जे रोवै लाए प्यारो। बढ़ंस महला पहला आवो मिलो सहेलियो सचड़ा नाम लय हाँ रोवै बिरखा बिरहा तन का अपना साहब संभाले हाँ साहब संभाल पंथ निहाल असा पियो थे जाना जिसका किया ते नहीं लिया हुआ तिसा का पाना जो तिन कर पाया सुहाग आया सी की हुक्म करे हाँ आवो मिलो सहेलियो सचड़ा नाम लय हाँ मरना मंदा लोका आखिया है जे मर जाना ऐसा कोए से वो साहेब आप समृत अपना पंथ सुहेला आ गए होए पंथ सुहेला जावो ता फल पावो आ गए मिले बढ़ाई पीटै स्यों जावे सिख सच पीटै स्यों जावो सच समावो ता पात लेख पाई मैली जाए पावो खसम पाओ रंग से रलिया माना है मरना मंदा लोका आखिया जे कोई मर जाना है मरण मुनसा सूर्य आक है जो होए मरण परवाणो सूर्य से ही आगे आखिया है दरगह पावे साची मानो दरगह मान पावे पत से जावे आगे दुख न लागे एक करते आवे ता फल पावे जित से भी पौ पागे ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आप जाने जानो मरण मुनसा सूर्य आक है जो होए मरे परवाणो नान किसनु बाबा रोई है बाजी है संसारो किता वेख साहेब अपना कुदरत करे बिचारो कुदरत बिचारे तारण तारे जिनकी आसो जाना है आपे वेख आपे बुझे आपे हुक्म पछाण है जिन किस की आसो ही जाना है ताका रूप पारो नान किसनु बाबा रोई है बाजी है ए संसारो। वडहंस महला पहला दखनी सच सरंदा सचा जानिए सचड़ा पर विदगारो जिन अपीना आप साजिया सचड़ा लख अपार दोए पड़ जोड़ बिछोड़िया ना गुरबिन घोर अंधारो सूरज चंद सिरजन निश्चलत विचारो सचड़ा साहब सच तो सचड़ा दे प्यारो रहा कुब सिर जी मेदनी दुख सुख देवन हारो नारी पुरख सिर जी आया बिख माया मो प्यारो खानी बाणी तेरी आ दे जी आया धारो कुदरत अक्सर चाया सच निबेड़न हारो आवागमन सिरजिया तू थिर करना हारो जमन मरना आ गया बदक जो बेकारो भूडड़ै ना विसारिया भूडड़ै क्या तिस्चारो गुण छोड़ बिखल दिया अवगुण का विचारो सजड़े आए तन जानिया हुक्म सचे करतारो नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मेलन हारो रूप न जाने सोनिया हुक्म बदी सरकारो बालक बिरद न जानी तोड़न हेत प्यारो नौंदा ठाके हुक्म सच्चे हंस गया गहनारे साधन छुट्टी साधन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया मिर मिर्त कड़ा अंग नड़े बारे सुर तुम हुई मरमाई है मैरुनी दरबारे रोबो कंत महलियो सच्चे के गुण सारे जल माली जानी ना वालिया कपन पट अंबारे वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मोए मन मारे जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे जीवन मरे सुजानिया फिर सचड़े हेत प्यारे तुसी रोवो रोमन आई हो झूठ मुठी संसारे हो मुठड़ी तंदा तामनिया फिर छोड़ी अड़ी विदन कारे कार कार कंत में लिया रूड़ हेत प्यारे मैं फिर सच सलाना हो रहस्य अड़ी नाम पतारे गुर मिलिया वेस पलटिया ता सा धन सच सिगारो आवो मिलो सहेलियो सिमरो सिरजन हारो बैयर नाम सुहागनी सच संवारन हारो गावो गीत न बिरड़ा नानक ब्रह्म विचारो। वडहंस महला पहला जिन जग सिर समाया सो साहेब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर न जानिया घट घट शब्द पछाणो वा सच शब्द पछाणो दूर न जानो जिने रचना राची नाम ते आए ता सुख पाए बिना वै पिड़काची जिन थापी सभ्य जाने सोई किया क्या जिन थापी बिद जाने सोई क्या को कह वखाणो जिन जग थाप बताया जालो सो साहेब प्रमाण बाबा आया है उठ चलना।

सर्वास सिर सिर सचड़ा लिखिया दुख सुख पूर्व विचारो वा दुख सुख दिया जे हा कि अज सो निभ है जी नाले जे कर्म कराए करता दूजी कारण पाले आम निरालम धंधा बादी कर को हुक्म छिडावन हारो अजकल कर दया काल व्यापे दूजे पाए विकारो जा मार्ग पंथ न सुजे उजड़ अंध गुबारो वा ना जाले तुलाइया ना भोजन प्रकारो वा भोजन पाओ ना ठंडा पानी ना कापड़ सिगारो गल संगल सिर मारे उबो ना दिस घर बारो इबके राहे जमन नाही पछताने सिर भारो बिन साचे को बेली नाही साचा ए बिचारो बाबा रोवै रवै सुजानिए मिल रोवै गुण सारे वा रोवै माया मुठड़ी तंदड़ा रोवन हारे वा तंदा रोवै मैलन तोवै सुपनंतर संसारो जो बाजी घर पुरमै भरमै भूलै झूठ मुठी अंकारो आपे मार्ग पावन हारा आपे कर्म कमाए नाम रथे गुरपुरै राखे नानक सह सुभाए बड़ हंस महला पहला बाबा आया उठ चलना है जग झूठ पसारो वा सच्चा घर सचड़ै सेवी है सच खरा सच यारो वा कूड़ लभ जा था न पासी अगै लह न ठाओ अंतर आओ न बैसो कही है जो सुन घर का ओ जमन मरना वड़ा विछोड़ा बिन

हर गुर दिया हर हर्ष पर्स सदा करे निसारा। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी का।